दोपहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: It's 10 a.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niha Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News. आप
3: वज़ीर तब्दील थींदो या इमरजेंसी लॻंदी वफ़ाक़ी हुकूमत जी मुशावरत आख़िरी मरहले में दाख़िल कानून वारे वज़ीर सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ चयो आहे त केपीअ में इमरजेंसी लॻणु घुर्जे ऐं लॻंदी बि आइन में घुर्बल ज़रूरतूं पूरियूं हूंदियूं सभु कुझु थींदो इमरजेंसी बाबति आइन वाज़े आहे वफ़ाक़ी वज़ीर अमीर मक़ाम चयो आहे त केपीअ में गवर्नर राज जूं घुर्जूं पूरियूं आहिनि केपी में कंहिं बि वक़्तु कुझु बि थी सघे थो गवर्नर राज जो ऑप्शन हले या न पर वॾो वज़ीर सुहेल आफ़रीदी न हलंदो

0: kebarat skor biri jasanta. Onaku ye four prasanta. Agar koi is baat se mujhe dala ta hai ke wo yahan par governor raj laga dega, emergency laga dega, jo mujhe apne nazariye se hataya. Mujhe koi fikr nahi hai isko sikhi. Jo mera mauka fir bhi tha Imran Khan saab ka hai. Imran Khan saab ka nazariya hai. Wo aaj bhi hai. Jo iske baad bhi hoga. Apni policy badlo. Policy shift lao. हमारे फौजी जवानों को, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों को, हमारे आम सिविलियंस को इसको मजीद जो है ये इस खून खराबे से बचाओ. इसमें पाकिस्तान की भी लड़ाई है, इसमें हम सब की भी लड़ाई है.
1: गवर्नर राज धमकन का डिजन वो ना कुर्सी खातिर पी नजरिए हथ न खड़स. के पी के वे वजीर सोहेल आफरीदी है अवामी मैंडेट खिलाफ केर भी नो वही सके. मुख्य को भी फिक्र ना है, रियासत के पी पॉलिसी तब्दील कर घुर्जे. पीटीआई अगवान सलमान अकरम राजा है लॉन्ग मार्च मुलतवी कर हुकूमत के वक्त दिनों है पंजन फैसल से नजरसानी कर हुकूमत से तय थन्दड़ गाल अमल किया.
2: मोहब्बत है अफगानिस्तान के साथ, आपको अब यह फैसला करना होगा कि आप पाकिस्तान के साथ है या अफगानिस्तान के साथ है. इट्स एज क्लियर एज दैट.
1: पीटीआई के पाकिस्तान ए अफगानिस्तान में कहीं कजी चूंड करनी पौंदी. सोहेल आफरीदी इंतजामी तौर नाकाम थियण बाद सियासी तौर भी नाकाम थी वो. सुतसमा रिफाकी वजीर अतातार चयो तो सूबे अंदर तबाही थी चुकी है. वफाक के पी के अरबे रुपया दिना आहन. बुधाए वे तो पैसा काडे वया. ममलकती वजीर तलाल चौधरी जो चवण हो तो के पी हुकूमत बुधाए तो संदन अफगानिस्तान बाबत रवियो नरम छो है. सरहद पार थन्दड़ हमलन में 70% अफगानी मुलविस. लॉन्ग मार्च बाबत पार्टी की तैयारी न हुई. लॉन्ग मार्च की तारीख तब्दील थियण से पार्टी कमजोर थी है. खैबर पख्तूनख्वा के अगूने वे वजीर अली अमीन गंडापुर है तो सूबे में वे वजीर की रिट न होने सबब वजीर मेंबर्स और कारकुन के खंभियों पे वे बानी के चवण से वो वजारत छी बीहर हुक्म मिलो तो बीहर वो वजीर थी सका तो. तहरीक तहफुज आईन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 4 अक्टूबर से रिथल एहतजाज वाली सद की हिमायत कर छी. तर्जमान अखुनजादा हुसैन चौथ तहरीक इंसाफ अपोजिशन इतिहाद जो हिस्सो है. तहरीक तहफुज आईन पाकिस्तान पारा 4 अक्टूबर वाली एहतजाज में भरपूर शिरकत कई वी. 27 सेप्टूबर वाले सद के सरबराही इजलास में अपोजिशन इतिहाद जो गडियल सद करार दिनों वो हो. बैरिस्टर गोहर के वाजे बुधा हो तो ही वक्त बीहर न इंद. 27 सेप्टूबर का एक डी अहम है. ये वक्त पाकिस्तान के जमहूरी मुस्तकबिल आईन की बालादस्ती लाए इंतहाई अहम है. दुश्मन फौज के जल्द अरबी समुंड में निकाली दिनी वी. ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा अली खामनाई समाजी वेबसाइट से जारी कल बयान में चयो है तो ईरानी फौज दुश्मन के ईरानी समुंड में निकाली दिनी है. हाने अरबी समुंड में दुश्मन की निकाली लाए ईरानी फौज जल्द वही कार्रवाई कंदी. अमरीकी सदर ईरान से इन हफ्ते गालियों थियण जो इम्कान जाहिर कर छोड़ो. डोनाल्ड ट्रंप जो चवण है तो उम्मीद है तो अमरीका तरफा गालियों कंदड़ हलंदड़ हफ्ते ईरान से गालियों कंदा. अमरीका जंग खटे चुको है पर कार्रवाई मुकम्मल तौर से खत्म न थियो आइन. मिडटर्म चूंडन का अग ईरान से हमलो कर सका तो. ईरान खिलाफ जंग जल्द खत्म थियण की उम्मीद है. असो बुनियादी मकसद ईरान के जौहरी हथियार ठाण का रोकण है. ईरान खिलाफ फौजी और मुआशी सतह से कामयाबी मिली रही है. इसराइली वजीर आजम नेतन याहू जो गडियल अरब अमारातों को गुझो दौरों 7 अक्टूबर 2023 से हमास के हमले बाबत अगवाट खबर देने वाले खबरों की तरदीद करण की दरख्वास्त. परदेही खबरी उदारे मूजिब इसराइली वजीर आजम नेतन याहू गुजरियल डी निजी उडाम जरिए यूएई जो गुझो दौरों कर. नेतन याहू गडियल अरब अमारातों के सदर शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान से मुलाकात कर हमास के हमले बाबत अगवाट इतला देने वाले खबरों की तरदीद करण की दरख्वास्त कई. आलमी इदारे मूजिब गडियल अरब अमारातों इसराइली वजीर आजम के 2023 में हमास के हमले का आगाह किया हो जैसे नेतन याहू नजरअंदाज किया हो.

फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से अमरीकी अफगान जंग कमीशन के वफद की मुलाकात। शुमैला एन चौधरी और डॉक्टर कोलन एफ जैक्सन की क्यादत में वफद की जी एच क्यू पहुंतो। ISPR मौज मुलाकात में गडियल दिलचस्पी, पाकिस्तान की हिमायत, इलाकई सिक्योरिटी, अफगानिस्तान की सूरत हाल ए कमीशन के कम बाबत मामलों से गालू कई व्यू। फील्ड मार्शल अफगानिस्तान तकरार, सिक्योरिटी सूरत हाल और उनके असर से मौकफ पेश कर पाकिस्तान के दरपेश चैलेंजेस का आगाह किया। अमरीकी वफद अफगान तकरार दौरान पाकिस्तान के किरदार और कुर्बानन को एतराफ़ कर इलाकई अमुन और इस्तेहकाम में पाकिस्तान के किरदार के सराहा। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से सीनियर वजीर शर्जील मेमन, नासिर शाह, खुर्शीद शाह, नवीद कमर और बेन जो मुलाकातों। सूबाई वजीरन बिलावल भुट्टो जरदारी के खातन की कारकर्दगी बाबत आगाह किया। मुल्की सियासी सूरत हाल से भी ख्याल की डे वट कई वही।

0: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ बिंदीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म दिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डी जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
1: सिंध के माथे का झूमर
2: DFM 88 नेटवर्क
1: सिंध की आवाज़

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी। हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक। रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एज ब्यूटी सोप। वाइट एज ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गीअ सां गॾु। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क सिंध।

के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

आप सुन रहे हैं जी ए एफ एम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बत और यकजहती का पैगाम। यहां वहां जी एफ एम 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
1: जो शहर जो घर सकरंट आई सकरंट जो आवाज
2: GFM 90.8

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज, आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: It's 1 p.m. This time check is brought to you by
1: White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News. आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर
3: बाबत वे गुमराह कंदड़ प्रोपेगंडा कई पई वंजे ईरान जे मौकफ में काब लचक नाए आपने अरुण बाबत शर्त बरकरार आए
4: केपीके में दहशतगर्दी के कंट्रोल करण पीटीआई जे वस में ना है डायलॉग हणण सा कुछ भी न थिंदो कम करनो पवंदो केपीके जे गवर्नर फैसल करीम को निचेवा आए त पीटीआई वारा लॉन्ग मार्च जो ऐलान त कन था पर ही सवाबी बे पार करे न सकंदा आईन ए कानून के न मञींदड़ सा गालियूं न थिंदियूं

0: ॿारहं टी मिंटनि ते मां पहुतो आहियां नरोबाग चौक आहे, उन चौक ते पहुतो आहियां त उते जेके हथियार बंद हुआ उन्हनि रोड ते खजी जो जेको आहे फड़ विछाए रोड ब्लॉक करे वेठा ऐं मां उन गोलाई टन ॾियां पियो उन नरेबाग चौक खां तकरीबन 6 खां 7 माण्हू उन टाइम ते उते मौजूद हुआ। मां उनखे गाॾी हिकु हथियार बंद खे गाॾी हिट करण जी कोशिश कई, जेकी गाॾी मुंहिंजी हेठि सारनि जे फसल में लही वई बंदि थी वई ऐं बाद में उन्हनि दरियूं खोले मूंखे ॿाहिरि कढियो ऐं मुंहिंजी तलाशी वरिती। कारण इहो आहे त भोतारनि जे ख़िलाफ़ लिखे थो, भोतारनि जे ख़िलाफ़ छो लिखे थो, लाॻीतो ही लिखंदो अचे थो भोतारनि जी सलामी न भरींदो आहे, जेको उहे मास्टर माइंड हो उन्हनि खे फोन ते इहे ॻाल्हियूं करे रहियो।
1: KTN न्यूज कानपुर मर जो रिपोर्टर अज़ीम सियाल शिकारपुर मां हथ, SSP बाज़ियाबी पुलिस जी महिनत करार ॾेई छॾी। धाड़ेल अज़ीम सियाल खे कोट शाहू थाणे जी हद शेरगढ़ पिकेट वटि छॾे फरार थी विया। अज़ीम सियाल जी बाज़ियाबी खां पोइ नापर कोट पुलिस चौकी ते पहुचण ताईं SSP शिकारपुर अणॼाण रहियो। अज़ीम सियाल कचे में मुख़्तलिफ़ रस्तनि खां थींदो नापर कोट चौकी पहुतो। अज़ीम सियाल चयो त हक़ सच लिखण तां भोतारनि अगवा करायो, मास्टर माइंड लॻातार धाड़ेलनि सां राब्ते में हो, वक़्त अचण ते नाला ज़ाहिर कंदसि। धाड़ेलनि धमकियूं ॾिनियूं आहिनि त भोतारनि ऐं संदन सहूलतकारनि जा नाला खयां त कुटुंब खे क़तल करे छॾींदा।
2: चक भर सां मुबैना पुलिस ऑपरेशन में औरतुनि ऐं ॿारनि समेत 5 ॼणा ज़ख़्मी। ॻोठ इमामदीन मेराणीअ में पुलिस जे ड्रोन हमले में 3 ॼणा मारिजी विया, औरतुनि ऐं ॿारनि समेत 5 ॼणा ज़ख़्मी। मारिजी वियलनि में चक जे ग़रीब आबाद पाड़े जा रहवासी मुनीर हसन ऐं अलीज़ा शामिल आहिनि।
1: लाड़काणे ऐं कंदकोट में फायरिंग जे वाक़यनि में 2 ॼणा क़तल। लाड़काणे जे सिविल लाइन थाणे जी हद में हथियारबंदनि जी फायरिंग में फिदा हुसैन बुलेदी मारिजी वियो। कंदकोट में अणॼातल हथियारबंदनि जी फायरिंग में मोहम्मद ख़ान मारिजी वियो। ॿिन्ही क़तलनि जा कारण मालूम न थिया आहिनि।
2: मरीअ में स्कूल वेन खाईअ में किरी पई, 10 ॿार ज़ख़्मी, 3 जी हालत ॻणती जोगी। पुलिस मूजिब ब्रेक फेल थियण सबबि वेन खाईअ में किरी पई, ज़ख़्मियुनि खे अस्पताल मुंतक़िल कयो वियो।
1: सिंध में 9 महीननि दौरान रेबीज सबबि 35 ॼणनि जे फौत थियण जी तसदीक। कराची जे चइनि वॾनि अस्पतालनि में 9 महीननि दौरान

0: केसनि जे चक जा 45,000 वधीक केस रिपोर्ट कया विया आहिनि। कराची जे ॿियनि अस्पतालनि में पिण 9 महीननि दौरान कुतनि जे चक जा 7,000 खां वधीक केस साम्हूं आया आहिनि।
1: गंबट में वधंदड़ बदअमनीअ ख़िलाफ़ शटर बंद हड़ताल रैली कढी धरणो बीहायो वियो। शहरनि सियासी समाजी धुरियुनि ऐं वापारनि शटर बंद हड़ताल करे रैली कढी धरणो हयो। सुबुह देरो में ॻोठाणनि जो वधंदड़ बदअमनीअ ख़िलाफ़ एहतजाजी मुज़ाहिरो। ॻोठाणनि पुरियत खां फुर्जे वाके ख़िलाफ़ मीरक निवाड़ो लिंक रोड ते एहतजाज कयो वियो। अमन अमान बहाल करायो वञे।
0: तंगवाणीअ में कराची में शहीद थियल एएसआई जे वारसनि जो माली सहायता न थियण ख़िलाफ़ एहतजाज। ॻोठ लश्कर विजाराणी वासी सिंध सरकार तर्फ़ां माली सहायता न थियण ख़िलाफ़ मुज़ाहिरो कयो। वारसनि मूजिबि एएसआई केसर खे ड्यूटी दौरान 1 साल अॻु मलीर में शहीद कयो वियो। हुकूमत माली सहायता करे।
1: ओपन आई जे मॉडल ओपन आई खे ई परेशान करे छॾियो। चैट जीपीटी 6.1 एक्सटर्नल कमांड जे हद उरांगण लॻो। मॉडल जी टेस्टिंग दौरान एक्स्ट्रा इंसाननि खे गुमराह कयो ऐं ॾिनल कम जी हद पार कई। ओपन आई चैट जीपीटी एक्स्ट्रा मॉडल जो रिलीज़ करे छॾियो।

हाँ बिल्कुल, तव्हांखे गानो ॿुधायूं था. डेडिकेट कयो आहे अज़हर लगारी, आकिब लगारी, आज़म लगारी, आरजे गुलाम मुस्तफ़ा टालपुर, इमाम बख्श खोखर, खालिक लाशारी सिस्टर. ये डी स्किन ब्यूटी क्रीम का कमाल है सिस्टर. हाँ जी, ये डी स्किन ब्यूटी क्रीम का कमाल है. अच्छा सागर भाई कहते हैं, अरे जी सिंह का गाना लगा दे, मेरे नाम कीजिएगा कोई भी. सागर भाई वो क्या है ना कि हम पाकिस्तान में जरा इंडियन गाने नहीं लगाते हैं हम, तो आपको जरा मैं कोई अच्छा सा पाकिस्तानी गाना लगा दूंगी, ठीक है आप सुन लीजिएगा. फरवा कहती है कि आप ही आप किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, आपको सारा वर्ल्ड जानता है, आपका शो सुनता है, अल्लाह जाही बुधाइए खबर को नहीं मुखे. हिदायतुल्लाह भाई हमारे साथ.

0: आपका अपना चैनल दिल चले पंजाबी।
1: ग्लोइंग स्किन जो राज, अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: GA FM 88
1: सिंध की आवाज।
3: तवां जो ख्वाब आए डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी, नर्स या हेल्थ प्रोफेशनल बणजण, त पोइ तव्हां लाइ आहे हिक बहितरीन मौक़ो। सखर जो मोतबर इदारो सिराजुद्दीन इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज में इन सेशन लाइ दाख़िलाऊं जारी आहिनि। चार सालनि जा डिग्री प्रोग्राम्स GBSN, GBSM, 5 सालनि जो प्रोफेशनल प्रोग्राम डॉक्टर ऑफ फिज़िकल थेरेपी DPD, 5 सालनि जा डिप्लोमा प्रोग्राम्स LHV, CMW, CNA। ख़ास सहूलियतूं, स्कॉलरशिप्स मौजूद। 2 सालनि जे कोर्सेस में एडमिशन बिल्कुल फ्री। जॾहिं त DPD प्रोग्राम में सिर्फ़ 10,000 रुपया दाख़िला फीस ऐं फीस सेमेस्टर सिर्फ़ 60,000 रुपया। हिते तव्हांखे मिलंदा एयर कंडीशन क्लासरूम्स, जदीद लेबोरेटरीज, मुकमल लाइब्रेरी, तजुर्बेकार फैकल्टी, हॉस्टल, पिक एंड ड्रॉप ऐं फिज़ियोथेरेपी OPD जी बहितरीन सहूलियत। ही इदारो सिंध हुकूमत जे हेल्थ डिपार्टमेंट खां मंज़ूर शुदा ऐं पाकिस्तान नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल खां तस्लीम शुदा लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी जो डिग्री याफ्ता आहे। याद रखो, सीट्स महदूद आहिनि, तंहिं करे पंहिंजे रोशन मुस्तक़बिल लाइ अॼु ई दाख़िला वठो। ऐं हिकु ख़ासि ॻाल्हि, हिते मेडिकल जा शॉर्ट कोर्सिस, OT, हेल्थ टेक्नीशियन ऐं ॿिया सभु कोर्सिस पिण थींदा आहिनि। एड्रेस: सिराजुद्दीन एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स, Sector 5, सखर टाउनशिप, मेन बाईपास रोड, सखर। राबितो: 07115635642 ऐं 03108166111। 44 सालनि जो तजुर्बो, हज़ारे मरीज़नि जो एतमाद। आगा होम्योपैथिक क्लिनिक, होम्यो डॉक्टर आगा लियाकत अली खान पठान, DHMS सिंध, RHMP इस्लामाबाद। 44 सालनि जे वसी तजुर्बे सां हर क़िस्म जा आसाबी अमराज़, जोड़नि जो सूर, मैदे में जलन, गैस, बदहज़मी, तेज़ाबियत, गुर्दनि जी पथरी, बवासीर, बे औलादी, वारनि जो किरण, गंजपण, फॉलेज, ख़ारिश ऐं ॿियनि मुख़्तलिफ़ सिहत जी तकलीफ़ुनि लाइ माहिराना होम्योपैथिक सलाह ऐं मुआसर इलाज फराम करे रहिया आहिनि। आगा होम्योपैथिक क्लिनिक, सखर, पुलिस हेडक्वार्टर चौक, पुलिस लाइन, सखर।

0: ग्रूमिंग छंछर खां खमीस सुबह 10 बजे का शाम 5 बजे ताई अपॉइंटमेंट आई वधिक मालूमात लाए हियरी राब्तो करियो 03 26 22 00 440
1: हेल्थ इज वेल्थ जहां माहिर डॉक्टर शेयर करते हैं सेहत की असली बात GFM का हेल्थ अवेयरनेस शो होस्ट आगा जब्बार के साथ जहां मुल्क के मायानाज हेल्थ स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स सेहत से मुतल्लिक अहम टॉपिक्स पर अपना एक्सपीरियंस प्रोफेशनल राय और मुफीद मालूमात शेयर करते हैं अपनी मेडिकल एक्सपर्टीज और हेल्थ केयर ब्रांड को हजारों लिसनर्स तक पहुँचाने के लिए हेल्थ इज वेल्थ का हिस्सा बनिए हेल्थ एक्सपर्ट या प्रोग्राम स्पॉन्सर के तौर पर स्पॉन्सरशिप के लिए आज ही राब्ता करें आगा जब्बार 03009312700
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 7:30 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
1: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज
2: असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम इनमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अमाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ बिंदीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म दिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डी जोशो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान

बार और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आप सुन रहे हैं व्हाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। और यहाँ पर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप लोगों की खूबसूरती के लिए कितने ज्यादा जरूरी है ये इस प्रोग्राम में आप लोगों को बताया जाता है। तो अगर आप भी इस्तेमाल कर रहे हैं डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स तो हमारे साथ जरूर शेयर किया करें ताकि हमें पता चले कि भाई आप ही इस्तेमाल कर रहे हैं डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स को। और यहाँ पर जितने भी खूबसूरत से लोग हमारे साथ मौजूद है उनको भी बताते चले जनाब कि आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल ऐसा है कि भाई आप इसे हर स्किन के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि हर स्किन के ऊपर आपकी स्किन किसी भी तरह की है, किसी भी टोन की है, आप उसके ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट। और उसके साथ साथ आप चाहे मर्द हजरात हैं, आप खवातीन हैं, हर कोई डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का यूज कर सकता है। और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का यूज जो है ना वो इसलिए भी फायदेमंद है क्योंकि डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट सबसे पहली बात जनाब ये मेडिकेटेड फार्मूला है। और जो मेडिकेटेड फार्मूला होता है ना उससे ये चीज तो वाजी हो जाती है कि भाई उसे हर स्किन के ऊपर इस्तेमाल किया जा सकता है और हर इंसान इस्तेमाल कर सकता है। तो मेडिकेटेड जो फार्मूला होता है ना उसे वो डॉक्टर्स तैयार करते हैं जो भाई आपकी स्किन से रिलेटेड फार्मूले ईजाद करते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि भाई आपकी स्किन के लिए कोई ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए जो अच्छा तो हो लेकिन सेफ भी हो साथ साथ, जो आपकी स्किन को नुकसान नहीं पहुंचाए, तो आपके लिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम मौजूद है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम जब आप परचेज करने के लिए जाते हैं ना तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका आपने ख्याल रखना होता है। वो क्या कि भाई जनाब अगर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम परचेज करने के लिए जाएं और वहां पर आप लोगों को ऐसा हो कि भाई वहां पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम अवेलेबल नहीं हो लेकिन दुकानदार आपको कोई सा भी प्रोडक्ट पकड़ा दे और बोले कि भाई जान ये ले जाइए ये डी स्किन ब्यूटी क्रीम से ज्यादा अच्छी है, तो आप उसे बदले में सिर्फ यही बोलिएगा कि हम सिर्फ और सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम परचेज करेंगे। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम की अगर आपको निशानी में बताती चलूं तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम की निशानी जो है वो है जनाब डी स्किन ब्यूटी क्रीम के डब्बी के ऊपर एक डॉक्टर माई का फोटो। यस डॉक्टर माई जो फोटो आए जनाब डी स्किन ब्यूटी क्रीम जी डब्बी जी में था। अगर तुम्हें भी चाहिए था तो तुम्हें निशानी खबर हो जाए तो तुम्हें डी स्किन ब्यूटी क्रीम जी यह निशानी याद रखो तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जी मथा डॉक्टर माई जो फोटो आए समझी हुआ डी स्किन ब्यूटी क्रीम जेका वडन वडन अखरन सा लिखल अथस। तो बिल्कुल तव्हां अगर केतिरा बि मासूम आहियो, तव्हां अगरि सफ़ा बि पढ़ियल न आहियो त तव्हां एतिरो त ख़बर पइजी वेंदी तव्हांखे त बाबा डी स्किन ब्यूटी क्रीम जी सुञाण तव्हां कीअं करे सघो था। बाकी आसानी तव्हांजे लाइ करे छॾी आहे त तव्हांजे लाइ हर जॻह ते असां अवेलेबल कराए छॾी आहे डी स्किन ब्यूटी क्रीम। अगरि न बि तव्हांजे क़रीबी जनरल स्टोर ते मिली रही आहे त पोइ तव्हांखे नंबर बि ॿुधायो वञे थो प्रोग्राम में जंहिं ते तव्हां राबितो करे पंहिंजे क़रीबी जनरल स्टोर ते डी स्किन ब्यूटी क्रीम खे अवेलेबल कराए सघो था। सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम को अवेलेबल कराते रहिए और ज़रा अपना ख्याल रखते रहिए क्योंकि डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का यूज आपकी खूबसूरती के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है जनाब। और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट जो है ना ये आपकी खूबसूरती में इस तरह से इजाफा लाते हैं क्योंकि हमेशा कहते हैं ना कि खूबसूरती हर किसी की ख्वाहिश होती है लेकिन ये वाला सीन भी हो जाता है जनाब की खूबसूरती के साथ साथ अपनी जिल्द की केयर जो होती है ना वो भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। और कुछ लोगों को पता नहीं होता कि भाई हम अपनी स्किन की केयर कैसे कर सकें या फिर खूबसूरती का ख्याल कैसे रखा जा सकता है क्योंकि बहुत सारे मार्केट में प्रोडक्ट होते हैं और आप जरा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं कि भाई हमें कौन सा प्रोडक्ट लगाना चाहिए कौन सा नहीं लगाना चाहिए। और आपको अपने चेहरे की मुनासिब सी केयर भी करनी है तो आप लोगों के लिए हाजिरी खिदमत है जनाब एक बहुत ही जबरदस्त बहुत ही शानदार एक बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी प्रोडक्ट जिसका नाम है जनाब डी स्किन ब्यूटी क्रीम। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम को अपनी रूटीन का हिस्सा बना लीजिए जनाब। ये क्रीम आपकी रोजमर्रा स्किन केयर को मजीद आसान और खूबसूरत बनाने के लिए बेहतरीन इंतखाब साबित हो सकती है। आपके जिल को नरम और मुलायम रखने के लिए आपकी स्किन को हमेशा मॉइस्चराइज रखेगी और आपकी जो स्किन है ना वो इस तरह महसूस होगा आपको कि भाई वाकई आप कुछ अच्छा इस्तेमाल कर रहे क्योंकि आपने बहुत सारे केमिकल वाले प्रोडक्ट्स लगा के देखे लेकिन जब आप कुछ अच्छा इस्तेमाल करते ना तो वो चीज वाजे आपके चेहरे पर नजर आती है कि हाँ आप कुछ अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बिल्कुल डी स्किन ब्यूटी क्रीम भी उन प्रोडक्ट्स में शामिल है जो कि

आपकी स्किन के लिए फायदा ही फायदा है जनाब. और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर वाइटामिन ई बीट्स हैं, माइक्रो बीट्स हैं, अल्फा अर्बोटीन है, कॉजिक एसिड है, ग्लूटाथायोन है. ये तमाम चीजें डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर ऐड की गई, और वो इसलिए ऐड की गई है ताकि भाई डी स्किन ब्यूटी क्रीम की जो क्वालिटीज है ना वो इस तरह हो जाए कि भाई आप लगाएं तो आप कहें आए हाय मजे ही आ गए. तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर ये जो वाइटामिन ई बीट्स और माइक्रो बीट्स की एडिशन की गई है ना, इसका ये मतलब है और इसको इसलिए ऐड किया गया है ताकि आप लोगों को जो रिजल्ट्स मिले वो ऐसे मिले जैसे आपने कोई महंगा सा फेशियल कराया हो. क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम बाजार तो एक नाइट क्रीम है, लेकिन ये 2-in-1 फार्मूला है, यानी कि ये एक नाइट क्रीम के साथ साथ एक फेशियल का रिजल्ट देने वाला प्रोडक्ट भी है. तो अगर आप भी कुछ अच्छा इस्तेमाल करना चाहते हैं, कुछ प्रीमियम सा इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप लोगों के लिए है. और डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करके आप अपनी खूबसूरती में 4 चांद लगाने वाले हैं, और सिर्फ वो भी 2 रातों के इस्तेमाल से. क्या बात है भाई, इतना कमाल धमाल सा प्रोडक्ट आज तक आपने नहीं इस्तेमाल किया होगा. अगर आप भी चाहते हैं भाई आपके पास कुछ अच्छा होना चाहिए, आपकी स्किन जो है वो सेफ होनी चाहिए, आप अजीब तरह के प्रोडक्ट से जरा बचे रहें, तो आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कीजिए. ये मेडिकेटेड फार्मूला है और जनाब 2 रातों में आपको रिजल्ट देने वाला फार्मूला है. इसे मर्द हजरात खवातीन हर कोई इस्तेमाल कर सकता है और ये बिल्कुल सेफ है, कोई मसले की बात नहीं, क्योंकि इसे डॉक्टर्स ने मिलकर तैयार किया है. तो बिल्कुल जी सेफ है, मर्द हजरात खवातीन हर कोई इस्तेमाल कर सकते हैं. स्किन सेंसिटिव हो, ऑयली हो, कॉम्बिनेशन टाइप हो, नॉर्मल हो, हर स्किन के ऊपर आप लगा सकते हैं जनाब जी. तो लगाइए ना, क्या सोच रहे हैं. डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल आपने किया है तो आपको रिजल्ट्स कैसे मिले हैं ये हमारे साथ शेयर जरूर किया करें. और इसी के साथ साथ अगर आप भी अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स को अवेलेबल कराना चाहते हैं लेकिन आपको पता नहीं कि कैसे अवेलेबल कराएंगे, तो भाई आपको नंबर बताऊंगी, उसके ऊपर आपने बस रब्ता करना होता है. और नंबर है जरा नोट कर लीजिए, बिल्कुल जनाब 03-12-50-25-907 बुड़ी 312 पंजाह 25 970. आई बियो नंबर आहे 03-27-38-4309 बुड़ी 32 73-84-309 ही नंबर साइन जेके तमा डायल करी पांजे करीबी जनरल स्टोर से डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन जो फेस वॉश अवेलेबल कराए सको था. सो बाबा अवेलेबल कराईंदा रहो, खूबसूरत थींदा रहो, छो त हाणे खूबसूरती जका ना आसान थी वई आहे. तमा चला मार्केट में डी स्किन ब्यूटी क्रीम जेड़ा प्रोडक्ट अची वयान बाबा, सो टेंशन छा जी, तमा अॼु ई वञो पांजे करीबी जनरल स्टोर से डी स्किन ब्यूटी क्रीम के परचेज करे अचो. इन खां अलावा तमा इस्तेमाल भी कयो पया त असां खे लाज़मी ॿुधाइजो, जी ॿुधंदड़नि खे ख़बर पए त बाबा डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल तव्हां जी स्किन जे लाइ केतिरो फ़ाइदेमंद साबित थियो आहे. यदि मां खां सवाल पुछो आहे त मूंखे ॿुधायो, अगरि निंड पैसनि ते मिले हा त तव्हां अमीर हुजो हा या वरी गरीब हुजो हा, ऐं तव्हां मूंखे 888 फेसबुक ते ज्वाइन कयो पिया, तव्हांजा बिल्कुल फीडबैक्स मूंखे मिलंदा वञनि था. फीडबैक्स त बिल्कुल तव्हांजा असां शामली प्रोग्राम रखंदासीं, पर हिते तव्हांजे लाइ मज़े मज़े जा गाना रखिया आहिनि, सो उहे केरु ॿुधंदो? असां ॿुधंदासीं बाबा. अचो त ख़ूबसूरत गानो ॿुधो, तव्हांजे नाले आहे जेके जेके असांखे ॿुधो पिया. प्रोग्राम आहे वाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड बाय डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स. लगाइए और खूबसूरत हो जाइए. I'm not in-

उहा वणी वियो आहे छो त मिठड़ो अॼुकल्ह टी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करे पियो. अगरि तव्हां बि टी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करणु चाहियो था त लाज़मी कजो. जी पोस्ट को लाइक और शेयर करती रहिए और मुझे बताइए आप हमारे साथ मौजूद हैं. हजार खंड जतोई भाई में सुन रहे हैं. वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं भाईजान, ठीक ठाक मजे में? हाँ जी हिदायतुल्लाह, मैंने देख लिया था, आप भी देखिएगा. हजार भाई कहते हैं कि हम भी आपके शो में आके साथ हैं. बहुत शुक्रिया प्यारे भाई, आपने टॉपिक का जवाब दिया है. मैं तो अमीर होता अल्लाह, यानी कि तमाम घटे निंड्र कंदा हो. मोहम्मद जमान भाई हमारे साथ कहते हैं गुड आफ्टरनून एंड वेलकम माय स्वीट बुआ जी, वेलकम टू यू. कहते अर्ज किया है ठहर ठहर कर खुदारा कलाम कीजिए ना, उदास शब का भी कुछ एहतराम कीजिए ना. सुना है आपकी आंखें जो है वो बादशाही आंखें हैं. नजर उठाइए हमको गुलाम कीजिए ना अल्लाह रे. नजीर कोसो भाई मैं सुन रहे हैं बलूचिस्तान से, भाईजान आपको वेलकम हो गया. लिखते हैं कि दूसरी तीसरी दसवीं और लाख मर्तबा ये बात याद रखें, किसी भी चीज के होने से पहले उससे हरगिज ना डरे और अपनी सोच और खौफ को गेब के इलम में है. हमेशा खैर की उम्मीद रखें, हमेशा अल्लाह पर तवक्कल करें और जान लें कि जब बंदे पर कोई आजमाइश नाजिल होती है तो उसके साथ अल्लाह की मेहरबानी और लुत्फ भी नाजिल हो रहे होते हैं. बिल्कुल आपने सही फरमाया, बहुत शुक्रिया. आप हमारे साथ ही आपको वेलकम कहते हैं. बिल्कुल जी, पोस्ट को लाइक और शेयर किया करें, कंजूसियां इस मामले में नहीं बनती. चाचा खालिद कहते हैं नींद तो हमसे रूठी हुई है बेटा, सदियों से हम तो गरीब हैं इस मामले में. ये टॉपिक आंसर, फिर तो आप अमीर होते ना अगर नींद पैसों से मिलती तो. आप तो सोते ही नहीं है तो आप अमीर होते, लॉजिक लगाया करें. अरे शाजिया आपका गाना लगाते हैं जी, सबर कीजिएगा. फहीम भाई कहते हैं अदा नाराज न थी जा भाई, मुखे खबर आए सिंधी शायरी में थोड़ी अजीब करी वेंदी है. एहसन अली भुक्टी हमें सुन रहे हैं भाईजान, वालेकुम अस्सलाम. अख्तियार अली गब्बर भाई हमारे साथ मौजूद है विलेज उस्मान गब्बर से, जबरदस्त प्रोग्राम, थैंक यू वेरी मच प्यारे भाई. तालिब मरी समारोह हमें सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया.

बात थी ना, कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं आप लोग, लेकिन कोई बात नहीं. डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करेंगे ना तो आप यकीनन खूबसूरत हो जाएंगे. खूबसूरती के मामले में आप कंफ्यूज नहीं रहेंगे. तो अगर आप ही खूबसूरत होना चाहते हैं तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कीजिएगा. और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट अगर आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल नहीं है तो नंबर आपको बताया ना, उसके ऊपर रब्ता लाजमी कीजिएगा. नंबर डायल करने के साथ ये हो जाता है कि भाई आपके करीबी जनरल स्टोर्स के ऊपर डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन फेस वॉश अवेलेबल करा दिया जाता है. तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज आपकी खूबसूरती के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, तो इस्तेमाल कीजिए. और जानिए कि मैं इतना क्यों बताती हूँ डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में. अच्छा, यहाँ पर दर्दे दिल हमारे साथ मौजूद है. वालेकुम अस्सलाम चंदा जानी, कैसी हो? माशाल्लाह बहुत प्यारा शो, थैंक यू वेरी मच स्वीटी. अच्छा फरवा कहती है टॉपिक आप ही में गरीब होती. अल्लाह. अच्छा फलक अली हमारे साथ कहते हैं अस्सलाम वालेकुम बाजी, ये सॉन्ग प्ले कीजिएगा. आई विल ट्राई. बैठी आप अपनी सीट पर, आपका गाना लगा दिया जाएगा. मोहम्मद जमान कहते हैं ना गरीब ना अमीर, ओनली निंड लवर. हाँ जी ऐसा ही होना चाहिए. अच्छा दर्दे दिल ने लिखा है कि इंसान की सच्ची पहचान उसके मुश्किल वक्त में दिखाई जाने वाले रवैये और सब्र से होती है. बिल्कुल आपने सही कहा है. और शाजिया कहती हानी एक बात सुने, क्रीम बिल्कुल यूज करती हूँ, नाइस क्रीम आहे. क्रीम जो नालो छाए यू तो बुधायो नी. मीर मोहम्मद बिरोही भाई में सुन रहे, वालेकुम असलाम कहते हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम शो नाइस गोट दाद. मोहम्मद बिरोही मदेजी से, मीर मोहम्मद बिरोही, अशफाक अली बिरोही, सजाद अली बिरोही हमारे साथ मौजूद है. क्या बात है जी, वेलकम हो गया आपका. फलक लिखते हैं कि आपके आने से बहुत खुशी मिलती है, बट प्रोग्राम कभी कभी सुनता हूँ, शामले प्रोग्राम भी नहीं हो पाता. आप हमेशा खुश रहें, आमीन. बहुत शुक्रिया जी, कोशिश किया करें कि शामले प्रोग्राम रहा करें, ठीक है. और नूर खान हमें सुन रहे हैं, कहते टॉपिक मैं बड़ा अमीर होता. अल्लाह सच्ची बताए. अबू हनीफ अल बलोची लिखते हैं कि कहाँ जाकर दुआएं करूं कि मिल जाए तू, ऐसी कौन सी मन्नतें करूं कि मिल जाए तू, तेरे बगैर सब खाली खाली सा लगता है, बता ऐसा क्या करूं कि मिल जाए तू. सिंधी सॉन्ग सुनाओ, डिसा डिसा माँ वरी वरी तोखे, माँ डिसा थी गानों मुखे मिलियो तो हलाए वठूंगा, ठीक है. नूर खान लिखते मैडम तुम्हारा शो लाइक एंड शेयर करिए, छो आए, बहुत शुक्रिया. वसीम अली हमें सुन रहे, कहते टॉपिक में गरीब और अमीर दोनों होता, वो कैसे भला बताएं तो. अच्छा अब्दुल गफार भाई हमारे साथ है, खुश आमदीद. मेलसी से हमारे प्रोग्राम को आपने ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया प्यारे भाई. मोहम्मद राशिद अवान हमारे साथ है, वालेकुम अस्सलाम. मैं ठीक हूँ, कहती आपका प्रोग्राम अच्छा जा रहा है हमेशा की तरह. सलाम टू ऑल लिसनर्स, वालेकुम अस्सलाम भाई. और फहीम भाई कहते हैं डॉक्टर माई जो नालो अन्या ताई खबर ना ही पई, मैडम का पूछा उन भी चयो मुखे केड़ी खबर. बाबा हा तमा डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल कर, तांके डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाइण सा मतलब हो जाए, ठीक है. नालन जो तमा छा कंदा तव्हां खे ख़बर हुजे त डी स्किन ब्यूटी क्रीम जे अंदर कहिड़ियूं कहिड़ियूं चीज़ूं आहिनि, डी स्किन ब्यूटी क्रीम तव्हांखे कहिड़ो कहिड़ो फ़ाइदो ॾींदी, ठीकु आहे, इहा तव्हांखे ख़बर हुजे. ओके जी, मलिक नजर हुसैन भाई हमें सुन रहे हैं, मलिक नजर हुसैन, मलिक भाई आपको वेलकम कहते हैं. और शरारती बच्चा कहते हैं आवाज तो बहुत प्यारी है पर आपकी जबान कौन सी है, सब कुछ सर के ऊपर से जा रहा है भाई. सिंधी सिंधी आप कहाँ से हमें सुन रहे हैं बताइएगा जरा. शरारती बच्चा और चाचा कहते हैं कि आप उर्दू मीडियम से पढ़ी है या सिंधी, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग था मेरे लिए क्योंकि आधा सिंधी और आधा उर्दू. नजर मोहम्मद भट्टी भाई हमें सुन रहे, मटियारी सी वालेकुम अस्सलाम कहते हैं आपको. अरे भाई डी स्किन का जो फेस वॉश है ना वो आपको मिल जाएगा, आप नंबर के ऊपर रब्ता कीजिएगा, उनसे मालूमात लीजिए कि भाई साहब हमारे एरिया में डी स्किन ब्यूटी फेस वॉश कब आप अवेलेबल करा देंगे, तो वो अवेलेबल करा देंगे तो आपको आसानी हो जाएगी. बस आप डी स्किन का जो फेस वॉश है ना वो अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराइए, ठीक है. हाँ जी हथ में गुलाब हुयो, अरे गुलाब जी जगह थे डी स्किन ब्यूटी क्रीम हुई तो मजो अची वी. अच्छा निधि हमारे
हमारे प्रोग्राम में है, कहती है अस्सलाम वालेकुम शोना, सॉरी फॉर लेट, मुझे लग रहा है तुम्हें आज सर दर्द है तो चाय पीना, चाय पीने से मेरा सर दर्द तो नहीं जाता, ये पता नहीं कौन लोग होते हैं जिनका सर दर्द चला जाता है चाय पीने से, मुझे तो दवाइयाँ खानी पड़ती है तब जाकर सर दर्द जो है वो थोड़ा सा ठीक होता है। नजर मोहम्मद भट्टी भाई हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया। और वासु भाई भी आ चुके हैं, हेलो वासु भाई। अच्छा शरारती बच्चा कहते हैं हाय माशाल्लाह बच्चों वाली हंसी, कहीं आप एआई तो नहीं, लग भी मुझे ऐसा ही रहा है कि मैं एआई हूँ। वाकई भी आजकल जो है ना एआई लोगों की जॉब्स खा रहा है, तो मैंने ये सोचा कि चलो भाई मैं एआई बन जाती हूँ। कम से कम मेरी जॉब तो सेफ रहेगी, समझ रहे।

ठीक है। और शफी मोहम्मद भाई हमारे साथ हैं, वालेकुम अस्सलाम। राजा लिखते हैं कि अमीर हो जा हाँ तो ही सवाल ही न पूछा हाँ, गरीब हो जा हाँ तो पैसा उधार बैठी जवाब दिया हाँ। डूड सही है ना जवाब? जी डूडी आप बताएं, कहाँ गायब रहते हैं आजकल, इतने मसरूफ है। हाय अल्लाह, अब्दुल जी कैसे हमारे साथ ही, वालेकुम अस्सलाम। पोस्ट को लाइक और शेयर कीजिए, ठीक है, जिन लोगों ने नहीं किया। किशोर भाई भी आ चुके, गए थे अदा स्मार्ट आयो आ नी, स्मार्ट आयो आ नी तो स्मार्ट के चौदह भली करी आयो नी, डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करो, ठीक है। आई हिते टाइम थे बाबा, न्यूज ब्रेक की जानेब जाएंगे और न्यूज ब्रेक के बाद हम ना जल्दी से वापसी आप लोगों के पास आ जाते हैं, तो आपने कहीं नहीं जाना, अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिलिएगा। मैं यूं जाकर यूं वापस आती हूं, सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग। जीएफएम 88 नेटवर्क, आप सुन रहे हैं व्हाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड बाय डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। लगाइए और खूबसूरत हो जाइए।

0: It's 2 p.m. This time check is brought to you by
1: तहजीब सकाफत से सजी सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती
2: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का सास GAFM 88 की आवाज
1: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज
0: It's 2 p.m. This time check is brought to you by
3: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Hardiya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
4: Ab aap sunenge GAFM Network par.

0: केपी ऐं बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सिस जो ऑपरेशन सत दहशतगर्द मारिजी विया। सिक्योरिटी ज़रियनि मूजिबि केपीअ जे बाड़ा वारे इलाइक़े में ऑपरेशन दौरान फितरल ख़ारिज जा 5 दहशतगर्द मारिजी विया। बलोचिस्तान में चागे जे इलाइक़े नोचका में ऑपरेशन दौरान 2 दहशतगर्द मारिजी विया। मारिजी वियल दहशतगर्दनि वटां वॾे अंग में हथियारत। सिक्योरिटी फोर्सिस मूजिबि बलोचिस्तान ऐं केपीअ मां आख़िरी दहशतगर्दीअ जे ख़ात्मे ताईं कारवायूं जारी रहंदियूं।
1: अमेरिकी सदर ईरान जा ज़ब्त असासा बहाल करण वारी ख़बर रद्द करे छॾी। डोनाल्ड ट्रंप चयो आहे त ईरान जा ज़ब्त थियल असासा बहाल करण ऐं ईरान ते लॻल पाबंदियूं हटाइण बाबति ईरान खे आछ नाहे कई। ख़बर कूड़ी आहे। न्यूज़ वेबसाइट खे ख़बर हटाइण घुर्जे। तमामु जल्द तेल जे अघनि में बि लाथ थींदी।
0: قطر ذریعے 7 نقطن تے بدل منصوبو امریکہ کے موکلیو آئے ہانے ایران کے امریکی جواب جو انتظار آئے ایرانی پردے وزیر عباس راچی چے آئے تا گزرل دی قطری سالسن سان تھل ملاقات میں ایرانی موقف امریکہ تائیں پہنچائے چھڑیو آئے وائٹ ہاؤس جو جواب اج تہران کے ملی ویندو ایٹمی پروگرام بابت بے گمراہ کندڑ پروپیگنڈا کئی پئی ونجے ایران دے موقف میں قابل لچک نہ آئی اپنے اور بابت شرط برقرار آئن
1: केपी के में दहशतगर्दीअ खे कंट्रोल करण पीटीआई जे वस में न आहे। डायलॉग हणण सां कुझु बि न थींदो, कमु करणो पवंदो। केपी के जे गवर्नर फैसल करीम कुंडी चयो आहे त पीटीआई वारा लॉन्ग मार्च जो ऐलान त कनि था पर ही सवाबी बि पार करे न सघंदा। आईन ऐं कानून खे न मञींदड़नि सां ॻाल्हियूं थींदियूं।
2: टी मिंटनि ते मां पहुतो आहियां नरो बाग चौक आहे, हुन चौक ते पहुतो आहियां त हुते जेके हथियारबंद हुआ उन्हनि रोड ते खजी जो जेको आहे फड़े विछाए रोड ब्लॉक करे वेठा ऐं मां उन गोलाई टन ॾियां पियो उन नरे बाग चौक खां। तक़रीबन 6-7 माण्हू उन टाइम ते हुते मौजूदु हुआ। मां उनखे गाॾी हिकु हथियारबंद खे गाॾी हिट करण जी कोशिश कई, जेकी गाॾी मुंहिंजी हेठि सारनि जे फसल में लही वई, बंदि थी वई ऐं बाद में उन दरियूं खोले मूंखे ॿाहिरि कढियो ऐं मुंहिंजी तलाशी वरिती। कारण इहो आहे त भोतारनि जे ख़िलाफ़ लिखे थो, भोतारनि जे ख़िलाफ़ छो लिखे थो, लाॻीतो ही लिखंदो अचे थो, भोतारनि जी सलामी न भरींदो आहे। जेको उहे मास्टर माइंड हो उन्हनि खे फोन ते इहे ॻाल्हियूं करे रहियो।
0: केटीएन न्यूज़ खानपुर महर जो रिपोर्टर अज़ीम सियाल शिकारपुर मां हथ एसएसपी अज़ीम सियाल जी बाज़ियाबी पुलिस जी महिनत करार ॾेई छॾी। धाड़ियल अज़ीम सियाल खे

0: साउथ थाणे जे हद शेर गणपिकट वटां छॾे फरार थी विया। अज़ीम सियाल जे बाज़ियाबीअ खां पोइ नापरकोट पुलिस चौकीअ ते पहुचण ताईं SSP शिकारपुर अणॼातल रहियो। अज़ीम सियाल कचे में मुख़्तलिफ़ रस्तनि खां थींदो नापरकोट चौकी पहुतो। अज़ीम सियाल चयो त हक़ सच लिखण तां भोतारनि अॻवा करायो। मास्टर माइंड लॻातार धाड़नि सां राब्ते में हो। वक़्तु अचण ते नाला ज़ाहिर कंदुसि। धाड़नि धमकी ॾिनियूं आहिनि त भोतारनि ऐं संदनि सहूलतकारनि जा नाला खयां त कुटुंब खे क़तलु करे छॾींदासीं।
1: चक भरसा मुबैना पुलिस ऑपरेशन दौरान टे ॼणा मारिजी विया। गढ़ी ते गुवारे इलाइक़े में औरतनि ऐं ॿारनि समेत पंज ॼणा ज़ख़्मी। गोदी मामुद्दीन वीराणी में पुलिस जे ड्रोन हमले में टे ॼणा मारिजी विया। औरतनि ऐं ॿारनि समेत पंज ज़ख़्मी थी पिया आहिनि। मारिजी वियलनि में चक जे ग़रीबाबाद पाड़े जा रहवासी मुनीर मीराणी, हसन मीराणी ऐं अलीज़ा शामिल आहिनि।
0: लाड़काणे ऐं कंदकोट में फायरिंग जे वाक्यनि में ॿ ॼणा क़तल। इस्लाम कोट मां हिकु ॼणे जो लाश हथ। लाड़काणे जे सिविल लाइन थाणे जे हथ में हथियारबंदनि जी फायरिंग में फिदा हुसैन बुलेदी मारिजी वियो, जॾहिं त कंदकोट में अणॼातल हथियारबंदनि जी फायरिंग में मोहम्मद ख़ान मारिजी वियो। ॿिन्ही क़तलनि जा कारण मालूम न थी सघिया। इस्लाम कोट जे गेस्ट हाउस मां कराची वासी पीरसन जो लाश हथ। इंतिज़ामिया मूजिबि मलीर वासी सैयद आफ़ताब आलम राति कमरो बुक करायो हो, चयाईं त थर कोल ते कमु कंदो आहियां।
1: मरी में स्कूल वैन खाई में किरी पई, 10 ॿार ज़ख़्मी थी पिया। टन जी हालत घंटी जोगी आहे। पुलिस मूजिबि ब्रेक फेल थियणु सबबि वैन खाई में किरी आहे ऐं ज़ख़्मी खे अस्पताल मुंतकिल कयो वियो आहे।
0: सकरंड में MRD तारीख़ दौरान शहीद थियल 16 ॼणनि जी 43 वर्सी ॻोठ पुनल खान चांडियो में वर्सी तकरीब। शहीदनि जे वारसनि

0: में 9 महीननि दौरान कुतनि जे चक जा 45,000 खां वधीक केस रिपोर्ट कया विया आहिनि। कराची जे ॿियनि अस्पतालनि में पिण 9 महीननि दौरान कुतनि जे चक जा 7,000 खां वधीक केस साम्हूं आया आहिनि।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: तहजीब व सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
3: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज। GAFM 88 की आवाज।
2: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
4: तव्हांजो ख़्वाबु आहे डॉक्टर ऑफ फिज़िकल थेरेपी, नर्स या हेल्थ प्रोफेशनल बणजण? त पोइ तव्हां लाइ आहे हिकु बहितरीन मौक़ो। सखर जो मोतबर इदारो सिराजुद्दीन इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज में हिन सेशन लाइ दाख़िलाऊं जारी आहिनि। 4 सालनि जा डिग्री प्रोग्राम्स GBSN, GBSM, 5 सालनि जो प्रोफेशनल प्रोग्राम डॉक्टर ऑफ फिज़िकल थेरेपी DPD, 2 सालनि जा डिप्लोमा प्रोग्राम्स LHV, CMW, CNA, ख़ासि सहूलियतूं, स्कॉलरशिप मौजूद। 2 सालनि जे कोर्सेस में एडमिशन बिल्कुल फ्री। जॾहिं त DPD प्रोग्राम में सिर्फ़ 10,000 रुपया दाख़िला फीस ऐं फीस सेमेस्टर सिर्फ़ 60,000 रुपया। हिते तव्हांखे मिलंदा एयर कंडीशन क्लासरूम्स, जदीद लेबोरेटरीज, मुकमल लाइब्रेरी, तजुर्बेकार फैकल्टी, हॉस्टल, पिक एंड ड्रॉप ऐं फिज़ियोथेरेपी OPD जी बहितरीन सहूलियत। ही इदारो सिंध हुकूमत जे हेल्थ डिपार्टमेंट खां मंज़ूर शुदा ऐं पाकिस्तान नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल खां तस्लीम शुदा लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी जो डिग्री याफ्ता आहे। याद रखो, सीट्स महदूद आहिनि, तंहिं करे
5: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर। GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

कहते मैं रापुर से सिद्रा मुस्कान हेलो हेलो जी हेलो कहते वो बैकग्राउंड मुझे बहुत अच्छा लगता है जिसमें लड़की बोलती है नारी नारी नारी ओके समझ गई कहते हैं वो सुना दे और क्या कहते हैं जी जी हमने शमन का गाना तो सुन लिया ना आपने एंजॉय करा होगा बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ मकसूद मल्हा गोट मोहम्मद तैयब थेबू से हबीबुल्ला थेबू हमारे साथ गए थे तवांजो शोवरी नाइस आई सलाम तवां की वालेकुम अस्सलाम तवां की प्यारा भा गोट गुलाब लगारी खां साबिर लगारी रिजवान लगारी वालेकुम अस्सलाम शो नाइस है प्लीज प्ले फायजा अली ओके आई ट्राई शहर गुलाब लगारी गोट बाशम खान रिंद से शायर गाजी खान रिंद रिजवान अली रिंद फैजान अली रिंद शहजाद अली रिंद छोटी कुनैन सेहरा आपका शो सुन रहे हैं आपकी कंपेयरिंग अच्छी है हमें हमीद अंसारी का गाना सुना दिया अच्छा आपने गाना भी लिख दिया मैं कोशिश करती हूँ ये गाना आपको सुनाएंगे ठीक है बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हैं

0: तुझो हलन थो मारे पिरी तुझो खिलन थो मारे पिरी
1: नहीं मैं तुक्का लगाया
0: तुझो त्रिश निगाह हुन सा ये दिसन थो मारे पिरी
1: क्या बात है किसकी भाई डे स्किन ब्यूटी क्रीम की यहाँ पर बात हो रही है तो आप भी डे स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कीजिएगा। इरम कहती है अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम चाला मुझे प्यारी दिलबर दोस्त जाने सिद्रा। हाँ जी की आयो खुश आयो। और ये हमारे साथ कहते हम भी आपके शो में आ गए। मेरा नाम अवेस अहमद मुगल है। अच्छा नहीं अवेस आपका नाम है। कहते अहमद मुगल का गाना सुनाए। ठीक है जी। कहते फैमिली के साथ आपका शो सुन रहा हूँ। भाओ रोहिणी में क्रीम कहाँ मिलेगी। अवेस भाई रोहिणी में क्रीम आपको हर जगह मिलेगी। बस आप थोड़ा सा कष्ट कीजिए अपनी टांगों को थोड़ी सी हरकत दीजिए और जाइए करीबी जनरल स्टोर से वहां से मालूमात लीजिए कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम कहाँ कहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है और आपकी फैमिली को भी वेलकम कहते हैं। चाचा खालिद आपने गाना भुला ही लगाते ही जी लगाते हैं। और ये हमारे साथ अल्ताफ जानी। अल्ताफ जाग जानी चाचू कहते हैं प्ले बरकत अली वफा की थी न रहिया डेडिकेट बिस्मिल अजरा खोसो एंड यू। महबूब अली मोरो सिटी से मैं सुन रहे कहते कुंज को सिक्का भरियो सलाम कबूल हो कुंज जलाल को प्ले करें थैंक यू ओके मैं लगाती हूँ जी। और अल्ताफ खोसो चाग जानी चाचू लिखते हैं कि मकसूद अच्छा दो दो चाचा आप गाने क्यों फरमाइश करते एक ही फरमाइश किया करें गाना डेडिकेट किया है बिस्मिल अजरा खोसो इन मी सो थैंक यू। मुझे बताएं कि आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर चुके या फिर अभी तक रहती है डी स्किन ब्यूटी क्रीम क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप सब लोग इस्तेमाल कर सकते हैं मतलब सब लोग लगाइए। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल मर्द हजरात खवातीन सारे लोग कर रहे हैं उनसे जरा पूछिए कि वो कितने खूबसूरत होते जा रहे हैं तो वहाँ की रीस नहीं है डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करो बाबा आई सुना सुना थींदा हेलो

आपको क्या लगता है इस मामले में जो ये निगत कह रही है? अच्छा, ये हमारे साथ है महल आवाज से गुलाम शबीर अबड़ो। बारिश इधरा पैसा होगा तो नींद भी आएगी, वरना सोच के रात गुजर जाएगी। बाजी मुस्कान, गाना सुना दो, तुम हमसे बिछड़ जाओ, ये हक है तुम्हारा, बोलो हमारे बिन करोगे कैसे गुजारा। वाह सही, वाह, लगाते हैं ये गाना आपके लिए। फिर खास अब्दुल्ला महर भाई हमारे साथी, वालेकुम अस्सलाम। अब्दुल्ला महर भाई, डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कर रहे हैं क्या? बात है जी, ये तो बढ़िया हो गया। इरम कहती है आप ही खैर तो है, मुझे नहीं पता।

आज के दौर में लगता है हाँ सब कुछ है। मिथिली कहती है सब कुछ तो पैसा ही है आजकल, ओ या गाल। किशोर भाई कहते हैं दुनिया में पैसों ही तो सब कुछ आए, ओ या गाल। दातुला कहते हैं पैसा है तो सब कुछ है। डिसो डिसो डिसो

कुछ तो आही बिल्कुल जी पैसे सा डी स्किन ब्यूटी क्रीम भी तुम वी था डी स्किन जो फेस वॉश भी तुम वी था सो पैसो जरूरी है उन हमारे सारी चाचा खालिद को सलाम झंडो मरी खां अली हसन खास के लिए मंजूर अली खास के लिए गुल पहाड़ खास के लिए या मोहम्मद खास के लिए ओके ओके मकसूद मला कहते सदरा सवाल तो बहुत अच्छा किया है पर मुझो वरी दिमाग कमी न थो करे सर के ऊपर बहुत जोर दिया है तोहफा रख दिया है अब तो मुझे चक्कर आ रहा है इतनी आपने जरा मेहनत क्यों कर दी बताएं मुझे अल्ताफ कौशल जाग जानी चाचू लिखते हैं प्लीज पहले भाई हाजिर हाजिर लगाते हैं आपका गाना थोड़ा सब्र कीजिए अच्छा टॉपिक ये है कि आप मुझे बताएं कि अगर नींद पैसों से मिलती तो आप अमीर होते या गरीब होते

हा भाई झंडोमरी में चाचो असो फेमस थी वो है झंडोमरी मानन के अलाए केड़ी चाचे सा सिक्का है चलो झंडोमरी में ताके डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिले पई डी स्किन ब्यूटी क्रीम वठो झंडोमरी वारो आई डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर ता इस्तेमाल कयो पया तो मुखे लाज़मी बुधाए जो ठीक है

ओके जी, हज़ार भा कहते पैसो कुछ भी ना है, पैसो कुछ भी ना है, तो तुम पांजो पैसो जो है ना वो हज़ार भा ने सभी मानों के विरहाड़ो जो चंदा पैसो पैसो सब कुछ हाला जेके यू चंदा ना सा पैसो कुछ भी ना है, असा नजर में पैसो कुछ भी ना है, ओए पांजो पैसो पो विराय छन छडींदा है, पान वट पैसो रखंदा छन न्यू लाई सारी प्रॉपर्टीज हो दो है ये चीज जरा समझ नहीं आती। और ये बात भी अक्सर वही लोग बोलते जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है, तो भाई इतना सारा पैसा है तो उनको बांट देना लोगों में, आपने क्यों रखा है अपने पास से? और आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम भी लगाइए उन्हीं पैसों से खरीद करके, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपको लगता होगा बहुत महंगी है, लेकिन डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ना ये मुनासिब से पैसों में आपको मिल रही है, तो आप जाएंगे और परचेज करके आ जाएंगे। डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपको देगी जनाब फेशियल वाला निखार, तो आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मर्द हजादी खवातीन भी। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपकी हर स्किन के हिसाब से तैयार की गई है, तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कीजिए और खूबसूरत होती जाएगी।

अच्छा डोडी कहते हैं कि पैसा इतना घट आए जो एटीएम भी डिसी चवे तो भाव दुआ कर अल्लाह अच्छा किशोर भाई कहते मेरे हाथ की चाय नहीं पीना वरना सरदर्द गायब हो जाएगा अल्लाह इतनी पावरफुल चाय था ठाईंदा आयो छा मौजिम चांडियो में सुन रहे हैं मौजिम चांडियो भाई आपको वेलकम कहते हैं जर्मन द माली हमारे साथ कहते हैं जबरदस्त प्रोग्राम थैंक यू वेरी मच प्यारे भाई और राजा कहते हैं कि डूडी सॉन्ग चलाओ हाजिर डूडी गानो तो बुधो निदड़ी कहती है कि हाँ भाई तां तो वैसे हमेशा ही दुखियल आयो सो दुखियल माण्हूअ खां वरी कहिड़ा असां कहिड़ी असां दवा पुछूं सही आहे न और दाऊद अली पी हमारे साथ है दाऊद पिताफी भाई वालेकुम अस्सलाम ठीक हूं आप बताएं कैसे और मीर मोहम्मद बिरोही भाई तव्हां जो मोहब्बत हुआ तव्हां प्रोग्राम के पसंद कयो पई चौथा डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो नाइस आहे डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल कई कोन इहो बि ॿुधाए जो अच्छा शरारती बच्चा लिखते हैं कि सुनने में मजा आ रहा है सिंधी जबान को लेकिन समझ आना बहुत मुश्किल है यानी सिंधी जबान को समझना बहुत मुश्किल काम है तो बस आप सुनकर जो है ना वो मजे लीजिए और माया अली हमें सुन रही कहती है इट्स सो गुड शो थैंक यू माया अली और अबू हनीफ कहते हैं मैं इंतजार इतना करूंगा खुदा भी कहेगा ले ले ये हक है तेरा आई ली तो अरे नहीं भाई डी स्किन का लोशन अभी तक नहीं आया व्हाइटिश का लोशन मिलता है तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम और डी स्किन का फेस वॉश अवेलेबल है अभी तक तो अगर सर्दियां आ रही हैं आपको लोशन की नीड है तो आप व्हाइटिश का लोशन जो है ना वो परचेज कर सकते हैं

भाई, चाचे का शादी हम क्यों कराएंगे? चाचे का शादी तो ऑलरेडी हो चुका है ना। अच्छा जैन अली कहते हैं हमारे यहाँ तवां वटि डी स्किन ब्यूटी क्रीम नथी मिले। चलो असा तवां जे करीबी जनरल स्टोर से डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अवेलेबल करायूं था, ठीक है जैन अली?

अच्छा हिदायतुल्लाह मुलाई के बारे में इंफॉर्मेशन हम नहीं रखते. आप ही रखिए और आप डीज की म्यूरिक क्रीम भी अपने पास रखिए. और यहाँ पर टाइम हुआ है जनाब, जरा शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की जानिब जाते हैं, उसके बाद जल्दी वापसी आप लोगों के पास आते हैं. आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ मौजूद रहिएगा, सुनते रहिए और हमारा साथ दीजिए पूरे पूरे तीन बजे तक. मैं जरा यूं जाकर यूं वापस आते हूँ. सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग. व्हाइट एशियन डीज की ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय डीज की ब्यूटी प्रोडक्ट्स. लगाइए और खूबसूरत हो जाइए.

0: 6:30 PM This time check is brought to you.
1: दिल खूबसूरती तो आर्च अपनाए. आर्च ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स, एक्ने एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट, स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो. आर्च ब्यूटी क्रीम.
2: GA FM 88
3: सिंध की आवाज.
4: छा तव्हां जो ख़्वाबु आहे डॉक्टर ऑफ फिज़िकल थेरेपी, नर्स या हेल्थ प्रोफेशनल बणजण, त पोइ तव्हां लाइ आहे हिकु बहितरीन मौक़ो. सखर जो मोहतबर इदारो सिराजुद्दीन इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज़ में हिन सेशन लाइ दाख़िलाऊं जारी आहिनि. 4 सालनि जा डिग्री प्रोग्राम्स GBSN, GBSM, 5 सालनि जो प्रोफेशनल प्रोग्राम डॉक्टर ऑफ फिज़िकल थेरेपी DPD, 2 सालनि जा डिप्लोमा प्रोग्राम्स LHV.

हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।

हमारे बिना करोगे कैसे गुजारा, क्योंकि हम आपको बता रहे हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में। अगर डी स्किन ब्यूटी क्रीम खत्म हो गई, आपको नहीं पता कि कहाँ से मिलने वाली है, तो फिर तो जाहिर बात है गुजारा करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आप अभी तक इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और आपके घरों में शादियां होने वाली हैं या फिर आपकी अपनी शादी हो रही है, तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल तो भाई साहब लाजमी करना चाहिए। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल अगर आप करना चाहते हैं तो कीजिए ना। डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपको हर जगह मिल रही है, हर जनरल स्टोर पर अवेलेबल है। और अगर आप भी चाहते हैं कि भाई हमारे करीबी जनरल स्टोर्स पर भी मिलनी चाहिए, तो उसके लिए आपको जो प्रोग्रामिंग नंबर्स बताती ना उनके ऊपर राबता करते रहिए, ताकि आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन फेस वॉश अवेलेबल।

बिल्कुल जी, हम आ चुके हैं प्रोग्राम की लास्ट लिंक में। जो लोगों ने अभी अभी सुना स्टार्ट किया या फिर जो स्टार्टिंग से लेकर हमारे साथ मौजूद है, सभी को वेलकम इन खुशामदीद कहते हैं। आपकी मोहब्बत और समातों और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया। यहाँ पर बहुत सारे प्यारे प्यारे लोग हमारे साथ मौजूद है जो जानना चाहते हैं भाई डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में, और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में आप लोगों को बताया जाएगा। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में ये चीज बड़ी फेमस है जनाब, डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाने वाले लोग जो ना वो बहुत ज्यादा खूबसूरत होते जा रहे हैं। अगर आप भी खूबसूरत होना चाहते हैं, मर्द हंस चाहते हैं, खवातीन है, तो बिल्कुल आप इस्तेमाल कीजिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम। अच्छा, रील्स देखकर गुजारा हो जाता है, बाकी ये सही बात है वैसे, और गुजारा नामुमकिन नहीं है, ये भी सही बात है। और अगर आप भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करने वाले हैं, तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल तो हर स्किन के ऊपर किया जा सकता है। अगर आप ये सोच कर परेशान हो रहे हैं कि भाई हमारी स्किन तो सेंसिटिव है, इसके ऊपर कोई भी क्रीम सूट नहीं करती है, जब भी कोई प्रोडक्ट लगाते हैं तो उल्टा हमारी स्किन खराब हो जाती है, तो भाई आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करके देखें। अभी तक आपने डी स्किन ब्यूटी क्रीम नहीं लगाई ना, इसीलिए आपको नहीं पता कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाने के बाद आपको कितने अच्छे खासे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जिसके अंदर विटामिन ई बीट्स हैं, माइक्रो बीट्स हैं, सिर्फ दो रातों के इस्तेमाल से आपको अच्छे से रिजल्ट देने वाली है, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम 2-in-1 फार्मूला है। ये नाइट क्रीम है, लेकिन ये आपको रिजल्ट जो देगी वो एक अच्छे फेशियल के देंगे, जैसे आपने कोई महंगा सा फेशियल कराया। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल आप भी कर सकते हैं, और डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल आप सारे लोग कर सकते हैं, हर स्किन के लिए है, हर इंसान के लिए है। और इसी के साथ साथ आप भी चाहते हैं कि भाई हमारे एरिया में मिलनी चाहिए, तो नंबर्स के ऊपर रابطہ जरूर किया करें। तारिक भाई हैं जिनका नंबर आप डायल करके अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल करा सकते हैं। भाई दूसरा नंबर अगर रिस्पांस ना दे तो तारिक भाई तो जरूर रिस्पांस दे देंगे, और तारिक भाई के नंबर है जनाब 03-12-50-2-5-907-12-50-970। ही नंबर आहे तमा डायल करे पाने करीबी जनरल स्टोर से डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन जो फेस वॉश अवेलेबल कराए सको था। अगर यो नंबर रिस्पांस न दे या वरी बंदू जे, तो तमा हिन नंबर ते राबतो करे जेको आहे 03-27-38-43-09। बुड़ी 332 है 73-84-309। ये नंबर तुम डायल करे सको था। सो डायल करो पांजे करीबी जनरल स्टोर से डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन जो फेस वॉश अवेलेबल कराइंदा रहो।

जी भलो गानो जेको असा बुधंदासीं असां गॾो गॾु तव्हांजा मैसेज आहिनि गोठ मुंदर खान पालारी से नाशीद नाशाद नेक मोहम्मद पालारी कहते अधी पैसो मजबूरी आ जरूरी आ इस दौर में जीने के लिए वरना मौत जरूरी आ अदो लगे तो सतायल आए अदा सही था जो तवा इरम कहती है वाह वाह सिजानी हाँ जी बहुत शुक्रिया और साइमा मीर कहती है अस्सलाम वालेकुम वाह जी वाह मस्त आरजे का मस्त शो निगत नाज जो गानो पैसा कुछ भी ना है सिद्रा तुम भले मेरे पैसे ले जाओ प्यार मोहब्बत है सब कुछ और रही बात डी स्किन ब्यूटी क्रीम की तो जिन्हें हम अजीज होंगे दिल वाला इंसान खुद ही लेकर देगा पैसा भी उसी के होंगे हमें नो चिंता अरे भाई हाँ दिल वो मू का गोलू तक डी स्किन ब्यूटी क्रीम वी फिलहाल तो पान वो जो मू मिली वो तो यो बार रखासी ठीक है और कहती है कि थैंक्स सिद्रो जानी दोनों फीमेल सिंगर माय मोस्ट फेवरेट आज लगता है अपना शो है और सिद्रो मस्त सॉन्ग्स आपने लगाए हैं टॉपिक गरीब और गरीब होते और प्यारी एक बात कॉपी सॉन्ग से परहेज करो चले मैं देखती हूँ तो वैसे कुछ कुछ अच्छे होते सारे अच्छे नहीं है जी हमारे साथ है गोठ मोमन तैयब थेबू का हबीबुल्ला थेबू कहते शो तुम्हारा लाजवाब आए थैंक यू वेरी मच भा तुम डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल भी करे ठीक है।

बिल्कुल जी, डी स्किन ब्यूटी क्रीम भी तव्हां वठी सघो था, डी स्किन ब्यूटी क्रीम भी तव्हां घुरी सघो था। पंहिंजे प्यारनि खां घुरो बाबा, जे ॾिसो साइमा मीर ॿार रखी छॾियो त को ईंदो त हुनखे चवंदसि डी स्किन ब्यूटी क्रीम वठी ॾे, पर तव्हां पाण वठो बाबा। ऐं तव्हां पंहिंजे पिणी प्यारनि खे गिफ्ट बि करे सघो था डी स्किन ब्यूटी क्रीम। सो जेके जेके तव्हांजी ज़िंदगी में पिणी प्यारा आहिनि, उन्हनि खे डी स्किन ब्यूटी क्रीम गिफ्ट कयो, ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम सां गॾु डी स्किन जो फेस वॉश बि गिफ्ट कयो। ऐं उन खां अलावा तव्हांखे जॾहिं इस्तेमालु कंदा त तव्हांखे अहिड़ी ख़ूबसूरती मिलंदी जेका तव्हां कॾहिं बि हासिल न कई हूंदी। सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल तव्हांजे खूबसूरती जे लाइ ॾाढो फ़ाइदेमंद आहे। सो इस्तेमालु करे ॾिसो, जीअं तव्हां बि सुहिणा थी सघो। अच्छा, सुल्तान महमूद हमारे साथ हैं। सुल्तान महमूद भाई को वेलकम एंड खुश।

अच्छा वसीम कहते हैं था गानों तो बुधाए जो हर जाए पिरी हर महफिल में मुके तोजी कमी महसूस थी यो गानों ताके 5 बजे वाले प्रोग्राम में बुधराईंदा जेके गाना रहजी वेना ना अजी प्रोग्राम में 5 बजे वाले प्रोग्राम बुधंदा सी ठीक आहे अच्छा दर्दे दिल कहते बिल्कुल शादी वाला माहौल हो गया था हाँ गाने ऐसे लगाए थे और किशोर भाई कहते कि अगर कोई शख्स कंहिंखे तकलीफ पहुंचाए तो समझो हू बेरहम आहे हुनखे कॾहिं मोहब्बत नथी हूंदी बिल्कुल बिल्कुल सही था चओ तव्हां जंहिंजे अंदर एहसास नाहे हू ज़ाहिर ॻाल्हि आहे ॿियनि खे तकलीफ़ ॾींदो हिते नींद का अमीरी ग़रीबी से क्या तालुक अरे भई हाणे ॾिसो अगरि निंड पैसनि में मिले हा त तव्हां निंड घणी वठो मतिलबु घणा निंड कंदा आहिनि माण्हू जेके घणी घणी सफ़ा 12-12, 13-13 कलाक त हू इलाही वठंदा न त हू ग़रीब हुजनि जेके वरी सफ़ा थोरी निंड कंदा आहिनि उहे मतिलबु घटि निंड वठंदा त उहे अमीर हुजनि लॉजिक

यादुला कहते हैं कि उसके कहने का मतलब है कि पैसा मेरे पास कुछ भी नहीं, जरा समझो। हाँ मुझे समझ आ गई थी बात। वहीम कहते हैं कि पैसे जे करे असा घर का परे बैठा आयो। ओ यह गाल थी, ओ यह गाल। और मैं तो जिंदा ही सैलरी की वजह से हाँ भाई सैलरी मिलती है। और अर्ज मोहम्मद गोला भाई में सुन रहे हैं, अर्ज मोहम्मद गोला भाई तांजो वाला वाल डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करे डिठो डी स्किन ब्यूटी क्रीम तवा के सफा सोनो सोनो बनाए छे थी। आई सजिद साजिद हुसैन सुमरो मारे सादे साजिद कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सिद्रा जी, नाइस हुए आपका डी स्किन लगायो पया नाइस आहे। फ्रॉम डी आई जी ऑफिस लाड़काना से शाहिद बबर का गाना सुनाए। ओके जी साजिद भाई मैं देखती हूँ टाइम बच गया तो आपकी पसंद का गाना लगाते हैं, ठीक है, नहीं तो 5 बजे वाले प्रोग्राम में सुन लेंगे। और हमारे साथ है जी शू वालेकुम अस्सलाम। ये नाम ऐसे ही आपने लिखा है जी और शू। ओके जी और साथ साथ शौकत अली सोलंगी भाई हमारे साथ ही वालेकुम अस्सलाम कहते हैं। मुस्तफा सोलंगी फ्रॉम जमाल शाह भाई को वेलकम कहते हैं। जीशू भाई कहते हैं कि कैसी हैं आप ही, बहुत दिन के बाद आपका शो सुन रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच प्यारे भाई आपको वेलकम कहते हैं। और हनीफ बिरोही भाई भी हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम हनीफ भाई। फैसल अहमदानी हमारे साथ ही वालेकुम अस्सलाम। फैसल के लिए असा की भी याद करो, हाओ भा हाओ।

दीवानगी जो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम के लिए है। और चाचा कहते हैं कि तुम्हारा दिल तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम के प्यार में कह दे। बिल्कुल चाचा आपने सही फरमाया। और मिर्जा के लहरी हमारे साथ कहते हाय हेलो। और इसी के साथ हम ये प्रोग्राम का लास्ट ट्रैक लगाते हैं और ये गाना होने वाला है जी फोजिया सुमरू की आवाज में।

तारिक भाई आपको रिस्पांस दे देंगे, ठीक है, आप नंबर के ऊपर रब्ता कीजिएगा. अच्छा फलक अली हमारे साथ है. फलक अली आपको भी वेलकम हो गया, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हैं. अच्छा अदो जे तो मेरे पास भी एक तारिक भाई आहे जेको तारिक रोड कराची में रहंदो आहे. जबरदस्त इंसान आहे भाभी. तारिक नाले वारा अदा जेके उन्हनि भला हूंदा आहिनि. असां तारिक भाई बि भलो आहे. ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम जेका आहे न, अगरि तव्हांखे नथी ख़बर पए त बाबा असां किथां वठूं, या अगरि डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिले थी, डी स्किन जो फेस वॉश नथो मिले, त तव्हां तारिक भाई जो नंबर मिलाए करे उन खां हाल अहिवाल वठी सघो था. ऐं आयशा मेमण बि असांजो प्रोग्राम वॾे शौक़ सां ॿुधंदी आहे. ऐं आयशा मेमण खे बि असां चऊं था भली करे आया. अच्छा मेटा ऑफिशियल हमारे साथ हैं. हेलो मेटा भी हमारा प्रोग्राम सुनते हैं आजकल. आसिफ पमर भी हमारा प्रोग्राम सुन रहे कहते हैं. अच्छा आपने शायरी भेजी है, बहुत शुक्रिया प्यारे भाई.

अबू हनीफ आपका भी बहुत शुक्रिया. और किशोर भाई कहते हैं कि अदा टॉपिक अगर केर एक घंटो 15 या 20 हज़ार जो डे तदें भी इंसान केतरो अमीर थी दो. सही आवा बता सही आता सही आ. अच्छा उन खां अलावा हिते तव्हां खां मोकल वठण जो जेको आहे न टाइम बि थी चुको आहे, सो इजाज़त वठूं था. जंहिंजा गाना रहिजी विया आहिनि उहे वरी तव्हांखे 5 बजे वारे प्रोग्राम में ॿुधरायूं था, ठीकु आहे? सो तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु कंदा रहो ऐं इलाही इलाही इलाही सुहिणा थींदा रहो, ठीकु आहे? डी स्किन ब्यूटी क्रीम तव्हांजे ख़ूबसूरती में 4 चंड लॻाए छॾींदी. ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगरि अञा ताईं कोन वरिती आहे त बाबा वठी अचो. और ये हमारे पास पैनल पर जाग डानी चाचू मौजूदु आहे, बहुत शुक्रिया आपका. और किसी का खाली मतलब नाम नहीं है, वो मैसेज मिला है तो बहुत शुक्रिया. वालेकुम सलाम, नाम लिखा करी अपना. और बस तव्हां सां मिलूं था वरी 5 बजे वारे प्रोग्राम में. सो पंहिंजो ओ एॾो सॼो ख़्यालु रखंदा. हिते का ग़लती थी हुजे त माज़रत, जंहिंजो को गानो ऐं मैसेज वग़ैरह रहिजी वियो त बाबा माज़रत. मोकिलाणी नाहे सिन सलामत सा सलामत. अलाह हाफ़िज़, बाय बाय, लव यू ऑल एंड.

0: शाह लतीफ का सूफी ठिकाना
1: फातिह मेहरान सिंध की एक और पहचान
0: जीए एफएम 88 नेटवर्क
1: सिंध की आवाज।
2: It's 3 p.m. This time check is brought to you by
3: White Ace Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
4: अब आप सुनेंगे GAFM Network पर KTN News.

0: पार्टी अंदरां ई आवाज उथण शुरू थी विया। तहरीक इंसाफ जे मर्कज़ी तर्जमान शौकत यूसुफ़ज़ई पार्टीअ खे लांग मार्च अणॼातल मुदे ताईं मुलतवी करण जो इशारो ॾेई छॾियो। शौकत यूसुफ़ज़ई पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौर खे लिखियल ख़त में चयो आहे त वफ़ाक़ी हुकूमत कुझु छूज खे जवाब ॼाणाईंदे केपीअ में एमरजेंसी लागू करण चाहे थी। रियासत सां टकराव बदिरां ॻाल्हियुनि लाइ रस्तो हमवार कयो वञे। अफ़गानिस्तान बाबति जवाब घुर्जे थो। सूबाई हुकूमत बि ख़तम थी सघे थी। दहशतगर्दीअ खे सपोर्ट करण जो इल्ज़ाम लॻाईंदे पार्टीअ ते बि पाबंदी लॻाए सघे थी।
1: केपीके में दहशतगर्दीअ खे कंट्रोल करणु पीटीआई जे वस में न आहे। डायलॉग खणण सां कुझु बि न थींदो, कमु करणो पवंदो। केपीके जे गवर्नर फैसल करीम कुंडी चयो आहे त पीटीआई वारा लांग मार्च जो ऐलान त कनि था पर ही सवाबी बि पार करे न सघंदा। आइन ऐं कानून खे न मञीदड़ सां ॻाल्हियूं न थींदियूं।
0: पाकिस्तान जे अमन वारी ख़्वाहिश खे कमज़ोर न सम्झो वञे। अफ़गान सरज़मीन तां थींदड़ हर हमले जो जवाब भरपूर ॾिनो वेंदो। सुद समा वारे वफ़ाक़ी वज़ीर अता तरण चयो आहे त अफ़गान तालिबान रजीम खे दहशतगर्दी वारे माइंड सेट करण मां निकिरणो पवंदो। अफ़गानिस्तान में दहशतगर्दनि जा थाक मौजूदु आहिनि। अफ़गानिस्तान जा घणा मसइला अक्सरियत पसंदीअ सोच जो नतीजो आहिनि। अफ़गान अवाम खे पंहिंजे मुस्तक़बिल बाबति फ़ैसिलो करण जो हक़ मिलणु घुर्जे।
1: अमेरिकी सदर ईरान जा ज़ब्त असासा बहाल करण वारी ख़बर खे रद्द करे छॾियो। डोनाल्ड ट्रंप चयो आहे त ईरान जा ज़ब्त थियल असासा बहाल करण ऐं ईरान ते लॻियल पाबंदियूं हटाइण बाबति ईरान खे आछ नाहे कई। ख़बर कूड़ी आहे। न्यूज़ वेबसाइट खे ख़बर हलाए हटाइण घुर्जे। तमामु जल्द तेल जे अघनि में बि लाभ थींदी।
0: कतर ज़रिए 7 नुक़्तनि ते ॿधल मनसूबो अमरीका खे मोकिलियो आहे। हाणे ईरान खे अमरीकी जवाब जो इंतज़ारु आहे। ईरानी परॾेही वज़ीर अब्बास राजी चयो आहे त गुज़िरियल ॾींहुं कतरी सालसन सां थियल मुलाकात में ईरानी मौक़िफ़ अमरीका जे बाड़ा वारे इलाइक़े में ऑपरेशन दौरान फितनल ख़ार जा 5 दहशतगर्द मारिजी विया। बलूचिस्तान में चागीअ जे इलाइक़े नोचका में ऑपरेशन दौरान 2 दहशतगर्द मारिजी विया। मारिजी वियल दहशतगर्दनि वटां वॾे अंग में हथियारत। सिक्योरिटी फोर्सिस मूजिब बलूचिस्तान ऐं केपीअ मां आख़िरी दहशतगर्दीअ जे ख़ात्मे ताईं कारवाइयूं जारी रहंदियूं।
2: टी मिंटनि ते मां पहुतो आहियां नरो बाग चौक। हुन चौक ते पहुतो आहियां त हुते जेके हथियारबंद हुआ उन्हनि रोड ते खजी जो जेको आहे फड़ विछाए रोड ब्लॉक करे वेठा ऐं मां उन गोलाई टन ॾियां पियो उन नरे बाग चौक खां। तक़रीबन 6-7 माण्हू उन टाइम ते हुते मौजूदु हुआ। मां उनखे गाॾी हिकु हथियारबंद खे गाॾी हिट करण जी कोशिशि कई। जेकी गाॾी मुंहिंजी हेठे सारनि जे फसल में लही बंदि थी वई ऐं बाद में उन दरियूं खोले मूंखे ॿाहिरि कढियो ऐं मुंहिंजी तलाशी वरिती। कारण इहो आहे त भोतारनि जे ख़िलाफ़ लिखे थो। भोतारनि जे ख़िलाफ़ छो लिखे थो? लाॻीतो हीउ लिखंदो अचे थो भोतारनि जी सलामी न भरींदो आहे। जेको उहे मास्टर माइंड हो उन्हनि खे फोन ते इहे ॻाल्हियूं करे रहियो।
1: केटीएन न्यूज़ खानपुर महर जो रिपोर्टर अज़ीम श्याल शिकारपुर मां हथ अची वियो। SSP शिकारपुर बाज़ियाबी पुलिस जी महिनत करार ॾेई छॾी। धाड़ेल अज़ीम श्याल खे कोट शाहू थाणे जी हद शेरगढ़ पिकेट वटि छॾे फरार थी विया। अज़ीम श्याल चयो आहे त हक़ सच लिखण तां भोतारनि अगवा करायो। मास्टर माइंड लॻातार धाड़ेलनि सां राब्ते में हो। वक़्तु अचण ते नाला ज़ाहिर कंदसि। धाड़ेलनि धमकियूं ॾिनियूं आहिनि त भोतारनि ऐं संदनि सहूलियतकारनि जा नाला खयां त कुटुंब खे क़तल करे छॾींदा।
0: चक वेझो गड़ी ते।

0: ऑपरेशन मुबैना तौर ड्रोन जो गोलो किरण सबब 3 जणा मारजी विया। औरतुनि ऐं ॿारनि समेत 9 जणा ज़ख़्मी, 2 जणा गणतीअ वारी हालत में सखर अस्पताल मुंतकिल। कोट शाहू थाणे जे हद ॻोठ इमामदीन मिसराणी में पुलिस पारां ॾोहारनि ख़िलाफ़ ऑपरेशन कयो। मारजी वियलनि में मुनीर, हसन ऐं अलीज़ा शामिल आहिनि। जॾहिं त वारसनि मूजिबि मारजी वियल माण्हुनि कचनि वारे इलाइक़े में तिरनि जे फसल जो लाबारो करण लाइ वियल हुआ, जिते घर ते मार्टर गोलो करण सबबि वाक़ियो पेश आयो। इंसाफ़ कयो वञे।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: तू ना मेरा हेटर, तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा, विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियां, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
3: तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट अच्छी लगती है।
4: मेरे पापा ने मेरी बात पक्की कर दी है, अब कुछ नहीं हो सकता, अब हम कभी नहीं मिलेंगे, मुझे माफ कर देना।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क सिंध।

0: सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज। आप सुन रहे थे
1: पीटीआई अखबार शौकत यूसुफ से लॉन्ग मार्च मुलतवी करण लाइ चेयरमैन बैरिस्टर गौहर के खत लिखी छो जेर मूजिब शौकत यूसुफ से खत में चो है तो वफाकी सरकार अफगानिस्तान से खराब लागापन के बुनियाद बनाए सूबे में इमरजेंसी या गवर्नर राज लगाए सके थी। तहरीक इंसाफ के वफाक से टकराव में अचण बदरा लॉन्ग मार्च मुलतवी करण घुर्ज। जेर मूजिब खत में चो है तो कौमी वफाद खातिर ए दहशतगर्दी के खर्च सबब लॉन्ग मार्च मुलतवी करण जो ऐलान किया वे। जलसन जुलूसन शहर से चढ़ाइन से तुम पैं मकसद हासिल कर ना सो गाल इनकार ना है पर गाल संजीदा होजन घुर्जन। पीटीआई बानी जो अदालती हुकुम से इलाज थी चुको है। कानून वाले वजीर आजम नजीर तारण जो तकरीब दौरान गाल आजम नजीर तारण चो तो पीटीआई बानी की हयाती के को भी खतरो ना है। सदस भेण भी चई चुकी है तो हाँ वो सेहतियाब है का घट वधाई थी है तो उन बेहतरीन फोरम अदालतू हैं एहतजाजन से कुछ भी नो

सिंध हाईकोर्ट टीएमसी के रिटायर्ड मुलाजमन के पेंशन समेत सबूरी रहतूं महीने अंदर अदा करने हुक्म दई छो। गुलशन इकबाल जिना टाउन के रिटायर्ड मुलाजमन के वकील पेंशन ग्रेजुएटी समेत बी रहतूं अदा न क्यों पी वन। रिटायर्ड मुलाजिम परेशान हैं। दरख्वास्त में बेयर कराची और सेक्रेटरी बलदियात के धुर बनाए वो। केएमसी के वकील दरख्वास्त गुजार के 50% रहतूं अदा क्यों हैं। बस 2 करोड़ रुपये का रकम अदा थी चुकी है। बाकी रहतूं भी जल्द अदा क्यों व्यू। अदालत 1 महीने अंदर समूर मुलाजमन के रहतूं अदा करने जो हुक्म दई छो। कराची के दरख्शा थाने की पुलिस अनमोल उर्फ पिंकी समेत बिन जवाबदार खिलाफ जांच मुकम्मल कर वरती। पिंकी खिलाफ दाखिल 3 केसन जो अबूरी चालान अदालत में पेश। अदालत अबूरी चालान मंजूर कदे केस जिले और सेशन जज की अदालत मुंतकिल कर छा। पुलिस अबूरी चालान जुडिशियल मजिस्ट्रेट साउथ की अदालत में जमो कराया। चालान में जवाबदार औरत अनमोल उर्फ पिंकी और सदन 3 साथियों उमर फहद हुसैन अवेस पे के गिरफ्तार जाना वो। चालान में चाह है पिंकी शहर में बंशात फरोशी जो वो नेटवर्क हलए रही हुई। केसर में गिरफ्तार बया जवाबदार औरत जहा सहूलतकार हुआ।

ऐं लाड़काणे में हथियारबंदनि जी फायरिंग में चाणका अस्पताल जो मुलाज़िम क़त्ल। शहर जे VIP रोड ते हथियारबंदनि जी फायरिंग में चाणका अस्पताल जो मुलाज़िम फिरदाउस बुलेदी मारिजी वियो। इतलाउ ते सिविल लाइन थाणे जी पुलिस ऐं चाणका अस्पताल जा मुलाज़िम वाके वारे हंधि पहुची विया। फिरदाउस बुलेदी जे क़त्ल वारे वाके ख़िलाफ़ पैरामेडिकल स्टाफ पारां OPD बंदि करे एहतजाज कयो।

आप सुन रहे हैं जी ए एफ एम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

के हो तो आवाज भी सिंह की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंह की आवाज।

0: It's 4:45 PM. This time check is brought to you by
1: Bank Islam Nilaya, Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
3: अजरक के रंगों से रंगी
4: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी
3: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
4: GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

Tutto bene.

0: It's 5 p.m. This time check is brought to you by
1: White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: कहाँ है कि उसका फोरम अदालतें हैं, हुकूमत नहीं है, क्योंकि कन्विक्शन के बाद हुकूमत का रोल खत्म हो

0: जी आज़ादी सां मशहूद करण वारो अमल ठीक न आहे। ये चाहिन था त जलसन जुलूसन ज़रिए बानी खे आज़ाद कराइन जेको मुमकिन न आहे। सुप्रीम कोर्ट बानी जे चकास जो हुक्म ॾिनो हो जेको थी वियो। हुक्म ते अमल में खोट आहे त अदालत खे ॾिसणो आहे। जलसन जुलूसन सां कुझु न थींदो। लॉन्ग मार्च खिलाफ़ पार्टी अंदरां ई आवाज़ उथण शुरू थी वियो आहे। तहरीक इंसाफ़ जे मर्कज़ी तर्जुमान शौकत यूसुफ सही पार्टी खे लॉन्ग मार्च अण ॼातल मुदे ताईं मुलतवी करण जो मशवरो ॾेई छॾियो। शौकत यूसुफ सही पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गोहर खे लिखियल ख़त में चयो आहे त वफ़ाकी हुकूमत कुझु इशूज़ खे जवाज़ बणाईंदे केपी में एमरजेंसी लागू करणु चाहे थी। रियासत सां टकराव बदिरां ॻाल्हियुनि लाइ रस्तो हमवार कयो वञे। चेयरमैन बैरिस्टर गोहर चयो आहे त पीटीआई जे लॉन्ग मार्च जो फ़ैसिलो बरकरार आहे। केपी असेंबली खे टोड़ण जो को बि इरादो न आहे। सुहेल आफ़रीदी खे नाहिल करार नथो ॾिनो वञे। मुतबादिल ते बि मुशावरत नाहे थी।
1: देखिए मार्च ये इनकी कोई कैपेसिटी नहीं है मार्च करने की। इन्होंने मुलतवी किए हैं, ये मार्च नहीं कर सकते हैं। अब ये जो है डेफिनेटली मीडिया पे आते हैं भर के मारते हैं। मैं कहता हूँ कैपेसिटी नहीं है मार्च करने की। अगर इनकी कैपेसिटी मार्च करने की होगी तो 27 को हो जाता, 4 को भी नहीं होगा।
0: पीटीआई में मार्च करण जी हिम्मत ही ना है। 4 अक्टूबर ते भी लॉन्ग मार्च न थींदो। मार्च थियणो हुजे हा त 27 सेप्टेम्बर ते ई थी वञे हा। केपी जे गवर्नर फैसल करीम कुंडी चयो आहे त केपी में दहशतगर्दी खे कंट्रोल करण पीटीआई जे वस में ना है। डायलॉग हणण सां कुझु न थींदो, कम करणो पवंदो। पाकिस्तान जी अमन वारी ख़्वाहिश खे कमज़ोरी न समझो वञे। अफ़गान सरज़मीन तां थींदड़ हर हमले जो भरपूर जवाब ॾिनो वेंदो। सुद समा वारो वज़ीर अताउल्ला तड़ चयो आहे त अफ़गान तालिबान रिजीम खे दहशतगर्दीअ वारे माइंड सेट मां निकिरणो पवंदो। अफ़गानिस्तान में दहशतगर्दनि जा थाक मौजूद आहिनि। अफ़गानिस्तान जा घणा मसला अस्करियत पसंदाणी सोच जो नतीजो आहिनि। अफ़गान अवाम खे पंहिंजे मुस्तक़बिल बाबति फ़ैसिलो करण जो हक़ मिलणु घुर्जे। अमरीकी सदर ईरान जा ज़ब्त असासा बहाल करण वारी ख़बर रद्द करे छॾी। डोनाल्ड ट्रंप चयो आहे त ईरान जा ज़ब्त थियल असासा बहाल करण ऐं ईरान ते लॻल पाबंदियूं हटाइण बाबति ईरान खे आच नाहे कई। ख़बर कूड़ी आहे। न्यूज़ वेबसाइट खे ख़बर हटाइण घुर्जे। तमामु जल्द तेल जे अघनि में बि लाथ थींदी। कतर ज़रिए 70 नुक़्तनि ते ॿधल मनसूबो अमरीका खे मोकिलियो आहे। हाणे ईरान खे अमरीकी जवाब जो इंतज़ार आहे। ईरानी परॾेही वज़ीर अब्बास अराग़ची चयो आहे त गुज़िरियल ॾींहुं कतरी सालिस सां थियल मुलाक़ात में ईरानी मौक़िफ़ अमरीका ताईं पहुचाए छॾियो आहे। व्हाइट हाउस जो जवाब अॼु तेहरान खे मिली वेंदो। एटमी प्रोग्राम बाबति बि गुमराह कंदड़ प्रोपेगेंडा कई पई वञे। ईरान जे मौक़िफ़ में काबिल लचक नाहे। आई अपना हुर्मुस बाबति शर्त बरक़रार आहिनि। वॾे वज़ीर वाद अली शाह जी सदारत हेठि पुलिस सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स जे गॾियल मनसूबे बाबति इजलास थाणे ऐं रिथाबंदी वारनि खातनि खे मनसूबे जी टेक्निकी ऐं मालियाती जांच जल्द मुकमल करण जी हिदायत। वाद अली शाह चयो त मुस्तक़बिल जे चैलेंजेस खे मुंहुं ॾियण लाइ पुलिस खे जदीद टेक्नोलॉजी सां जोड़ियो कयो वञे। अरिड़हीं तरमीम नाकाम थी वई आहे। नवा इंतज़ामी यूनिट अंटर आहिनि। सिंध में मनसूबो निज़ाम ऐं पंजाब में वन वुमेन शो हली रहियो आहे। सिंध असेंबली में अपोज़िशन लीडर अली ख़ुर्शीदी चयो आहे त अरिड़हीं तरमीम को लाभ न ॾेई सघी आहे। नवनि इंतज़ामी यूनिट तरफ़ वञणो पवंदो। हुकूमती निज़ाम वारो मॉडल हाणे तब्दील थियणु घुर्जे। केपी ऐं बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस जो ऑपरेशन 7 दहशतगर्द मारिजी विया। सिक्योरिटी ज़रियनि मूजिबि केपी जे बाड़ा वारे इलाइक़े में ऑपरेशन दौरान फितनतुल फारिज जा 5 दहशतगर्द मारिजी विया। बलोचिस्तान में चाकरी जे इलाइक़े नोकचा में ऑपरेशन दौरान 2 दहशतगर्द मारिजी विया। मारिजी वियल दहशतगर्दनि वटां वॾे अंक में हथियार हथ। सिक्योरिटी फोर्सेस मूजिबि बलोचिस्तान ऐं केपी मां आख़िरी दहशतगर्द जे ख़ात्मे ताईं कार्रवाइयूं जारी रहंदियूं।
2: बारह जी 3 minutes.

0: पोतुआ नरोबाग चौक उन चौक से पोतुआ तो उत हथियारबंद हुआ उन्होंने रोड से खजी जो जो फड़ विछाए रोड ब्लॉक कर वेठा उन्हीं गोलाई टन दिया पे उन्हीं नरेबाग चौक का तकरीबन छह का सत मू उन टाइम तो उत मौजूद हुआ मां उनके गाड़ी एक हथियारबंद के गाड़ी हिट करने की कोशिश कई गाड़ी मुझी हेठ सारे के फसल में लही बंद थी वही बाद में उन दरिय खोले मुख्य बाहर कडो मुझी तलाशी वरती कारण यो है तो बोतारन के खिलाफ लिखे तो बोतारन के खिलाफ छो लिखे तो लागी तो ही लिखंद अचे तो बोतारन की सलामी न भरीद है जो मास्टर माइंड उनके फोन ते ये गाल कर रहे हो।
1: केटीएन न्यूज खानपुर मेहर जो रिपोर्टर अजीम सियाल शिकारपुर में हथ एस एस पी शिकारपुर बाजियाबी पुलिस की मेहनत करार दे छी धाड़ियल अजीम सियाल के कोट शाहू थाने की हद शेरगढ़ पिकेट वट छे व्या अजीम सियाल चो तो हक सच लिखण तां भोतारन अगवा करायो मास्टर माइंड लगातार धाड़ियलन सा राबते में हो वक्त अचण ते नाला जाहिर कंदुस धाड़ियलन धमकियों दिनी आहिन त भोतारन ए सदन सहूलतकारन जा नाला खया त कुटुंब के कतल कर छी चक वेझो गढ़ी टेको जे कच्चे वारे इलाके में पुलिस ऑपरेशन उबैना तौर ड्रोन जो गोलो लगण सबब टे जणा मारजी व्या औरतों ने बारन समेत नव जणा जख्मी ब जणा गणती वारी हालत में सखर मुंतकिल कोट शाहू थाने जी हद गोठ इमामुद्दीन मिसराणी में पुलिस पारा डोहारियन खिलाफ ऑपरेशन कयो वियो मारजी वेलन में मुनीर मीराणी हसन मीराणी ए अलीजा शामिल वारिसन मूजिब मारजी वेल माण्हू कच्चे वारे इलाके में तेरन जी फसल जो लाबारो करण लाइ वयल हुआ जिते घर ते मार्टर गोलो किरण सबब दखण भरसा हथियारबंदन हथा पी मासूम पुट समेत कतल कादिर शाह वट हथियारबंदन फायरिंग करे गुलाम हुसैन जाफरी ए संदस मासूम पुट अब्दुल सत्तार के कतल कयो पुलिस मूजिब वाक्यो कारण जे तकरार तां पेश आयो आहे वधीक जांच कई पई वञे सकरण में एमआरडी तहरीक दौरान शहीद थियल 16 जड़न के 43 वर्षी गोठ पुनल खान चांडियो में वर्सी तकरीब शहीदन के वारिसन की मज़ारन ते हाजिरी एमपीए गुलाम कादिर चांडियो चयो त गोठ पुनल चांडियो के गोठाणन जमहूरियत की बहाली लाए जान की कुर्बानी दिनी खेन सलाम पेश कयूं था।

लाड़काणे में कत्ल थियल ओटी टेक्नीशियन फिदाउस एन बुलेदी के जवाबदारन की गिरफ्तारी लाए पैरा मेडिकल स्टाफ तरफा एहतजाज। चाइनी सरकारी अस्पताल की ओपीडीज जो बाइकाट कर धरणो हयो पियो। अखबारनि चयो त फिदाउस एन बुलेदी के कत्ल में मुलविस जवाबदारन के गिरफ्तार किया वञे।

0: सोलर एंड बैटरी से डायरेक्ट।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट यू बाय
3: बैंक इस्लामी लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग।
4: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज, तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज।
5: GAFM 88
4: नेटवर्क,
6: सिंध की आवाज।

सिंध जी सरजमीन ते शाम जे इन पहर में गोठन वाहणन वस्तियन बस्तियन आबाद शहरन में ही आवाज GFM 88 रेडियो नेटवर्क जो है अवां जी खिदमत में शो पेश कजे थो सिंधड़िए जी शाम सिंधड़ी जी शाम में मोहब्बतुन भरियो यूनिस बकारी

नाले पे गुजरे अवां बिल्कुल ठीक ठाक ऐं हशाश वशाश आहियो असांखे उमेद आहे तव्हां ख़ुशबाश हूंदव दोस्तों जेकॾहिं तव्हां ख़ुशि आहियो त तव्हांखे सॼी दुनिया ख़ुशि लॻंदी ऐं जेकॾहिं तव्हां परेशान हूंदव त पोइ तव्हांखे पूरी दुनिया परेशान लॻंदी सो अवां ते छॾियल आहे त तव्हां पंहिंजे पाण खे ख़ुशि रखी सघो था या परेशान कॾहिं कॾहिं असीं पढ़ाई परेशानीअ में बि घणो परेशान थी वेंदा आहियूं ऐं कॾहिं कॾहिं असीं पंहिंजे ख़ुशीअ में बि मापजी न आहियूं सघंदा बहरहाल इंसान इंसान आहे पंहिंजे हिसाब सां जीए थो हले थो घुमे थो फिरे थो जेतिरो थी सघे थो ॿियनि जे ख़ुशियुनि लाइ जीए थो

जी जनाब, तुम मैसेज कर सको था। तरीके कार है लिखनो MTI स्पेस पेंजे गोठ शहर जो नालो लिखो, पेंजे नालो लिखो 888-188-81 दे मैसेज तेरे मोकल जो। ॿुध पिया GFM 88 रेडियो नेटवर्क खे GFM 88 रेडियो नेटवर्क जे स्टूडियो जी पेशकश यकीन न।

0: FM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: वेलकम बैक मजे सामाइन अवां बुधो पिया जीए FM 88 रेडियो नेटवर्क के अवां जे पंज शो अवां बुधो पिया सिंधड़िए जी शाम है अमा जो आरजी अवां सा मुखातिब है यूनिस बकारी मोहब्बतुन जी महफिल जारी हो सारी सो मोजे समीन जिकर अमा शामिल थियण चाहे हो था तो मैसेज हाणे ही मोकिलियो लिखो MTI स्पेस रही पंहिंजे ॻोठ ऐं शहर जो नालो लिखो पंहिंजो नालो लिखो ऐं 888-881 ते असांखे मैसेज ॾेई मोकिले सघो था ऐं मैसेज जीअं ई तव्हांजो पहुचंदो त ज़रूर शामिल कंदासीं ऐं हा GFM 88 रेडियो नेटवर्क खे ध्यान सां प्यार सां ऐं पंहिंजाइप सां ॿुधण लाइ तव्हांजूं मोहबतूं ऐं अव्हांजो थोरो थर जी वारीअ खां वॾो मैसेज पहुची चुको है सजन सांगीए जी वांड खा असांगे बुधे तो गुलाब गुल अवां जो तमाम घणी मेहरबानी गुलाब गुल थैंक यू भलीकार चवंदासीं मोहब्बतूं अवां जूं ऐं असांखे ज्वाइन कयो आहे

शहर झोल खां गोठ गुलाम हुसैन जलालाणी खां नाज़ फकीर मोहम्मद जलालाणी अवां जो तमाम घणी मोहब्बतूं भलीकार महबूब नाज़ जलालाणी मुख्तियार नाज़ जलालाणी आरज़ू असलम जलालाणी जो मैसेज पहुतो अवां लिखियो अस्सलामु अलैकुम वालेकुम अस्सलाम तमाम तमाम घणी महिरबानी कोठ मुरीद मंगरियो रोहड़ी सखर का नजीर अहमद मोहसिन अली आई मुदसर अली मंगरियो बुधन पिया अवां जो तमाम घणी मेहरबानी ऐं मोहब्बतूं अवां खे चवंदासीं भलीकार खुश हुजो आबाद हुजो कोठ पुनू खान पंवर खां रुस्तम अली पंवर लिखे थो त खूबसूरत प्रोग्राम मिठा माण्हू तमाम घणी महिरबानी भलीकार ऐं गोठ हाजी सुल्तान लुंड खां प्यार अली लुंड ॿुधे पियो अवां जूं तमाम घणियूं मोहबतूं झलूरी खां खालिक लाशारी अवां जो मैसेज पहुतो अवां जूं तमाम घणी महिरबानी थैंक्यू वॾा वॾा कोठ हाजी गुलाम खास केली झंडो मरी खां असांखे ज्वाइन कयो कुर्बान अली खास केली अवां जूं तमाम घणी महिरबानी कुर्बान वेलकम चवंदासीं ही आहे GAFM 88 रेडियो नेटवर्क शामिल थियण चाहियो था त हाणे ई मैसेज कयो लिखी वठो जी जी बिल्कुल शुरू में लिखो MTI MTI लिखण खां पोइ स्पेस ॾियो पंहिंजे ॻोठ ऐं शहर जो नालो लिखो पंहिंजो नालो लिखो जी हा पंहिंजो नालो लिखण खां पोइ 888-188-81 ते मैसेज ॾियारे मोकिलिजो

मस्जिद पर का यूनुस भाई क्या हाल है, सलाम कबूल हो। 78 मोरी खां राजा हमीर चंद मैसेज मोकलियो आई किशोर तांजो तमाम घणी मेहरबानी हूं। हीरा लाल अवां सा गद सवाई लाल बुधे पियो तमाम घणी मोहब्बत हूं भलीकार साईं।

GFM 88 रेडियो नेटवर्क शो है सुनड़ी जी शाम अवां जे नाम ट्रैक है बुधंदे कमर्शियल ब्रेक दा वधना सी जे खां पो वापस अची वरी बवां जा मैसेज शामिल कंदा सी तेस तई जल्दी जल्दी टाइप करे वठो MTI स्पेस वही पेंजे गोठ ए शहर जो नालो लिखो 88881 88 81 असन जो नंबर है उनते मैसेज त्यारे

0: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी। हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक। रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एज ब्यूटी सोप। वाइट एज ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गीअ सां गॾु। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: सकरण की हो तो आवाज भी सकरण की है।
2: सुनते रहो जी एफ एम 90.8।

चेहरे बदलते रहे, जिंदगी वैसे ही चलती रही। दुनिया बदलती है फितरतन, इसमें हमारी कोई गलती नहीं। पलती रही दिल में उदासी, अंधेरों से लेके रोशनी तक, खामियों से खामोशियों तक, होश से लेके मदोशियों तक। अफसोस नहीं के अफसाने लिखे, वो अफसाने मबनी अफसरदगी पर। खुदा तू देता है बेहिसाब, मेरे दर्द में थोड़ी तो कमी कर। खिले ना क्यों यहाँ अब गुलाब, क्यों रही बहार की कमी बस। किस्मत हमारे ही हाथ में है, उस पे इख्तियार की है कमी बस। वो लोग भी गुजर गए, वो घर भी जल चुके, वहाँ कुछ नहीं वहाँ से अब दर्द उठे। हम तो भरेंगे दोस्त, वक्त की मरहम में शिफा है, पर वक्त पे रहे मैं दोस्त, वो कब किसी के लिए रुका है। झुके ना सर फैले ना हाथ, हमारे अब बस यही दुआ है। कभी कभी आए सोच, जो हुआ वो ठीक ही हुआ है। सबर से सबक जो मिले हैं, सबर से अब मेरी सुलह है, कि कोई नहीं अगर तेरा तो मेरी जान खुदा।

एक मिनट रुकी, मेरा वेट कर। ओके देन जफी भाई टेक वन। कहाँ सुना, माफ कीजिएगा, शालीमार गार्डन में 5:30 बजे मेरा शूट के लिए हेयर एंड मेकअप। जल्दी मेरे शेड्स ला, लेकिन पहले चेक द पैरामीटर। गानों के बढ़ते डेसिबल, चेक पे बढ़ते डेसिबल, इट्स इनक्रेडिबल। मैं इसमत झुकदाई, कैसे किस्मत को लाई, आई थिंक अबाउट दिस एट नाइट। Give a bash at the bed of the mansion, mad that mera instinct animalistic. Mad magician, yeah, mathematician, I never take second position, I'm getting ballistic. Cataclysmic, bilabulously, dekho meticulously. Love's mere medicinal se, love kiya maine kalam se, sach bola maine kasam se. Rang dekho kaise badalte, dikhte hain sab ke, karte kab se. Baatein pakki, baatein kacche, I've had enough of it, but I keep going. Got no option but to keep flowing, keep the toxic out of my zone. Dukkin the sheriff up, knee off of my throne, but before I gotta go, let me tell you this. One thing I need you to know, if you ever need a friend, you can call my phone.

मेरा और हम अकेले ही चलते रहे, चले ये शाम अब दिन चले, चलो रोशनी की सिर्फ चले, अभी रात पे यकीन मेरा, अजाए मुझे ये असीम करे, हकीम है कलम।

0: कोई नहीं अगर तेरा तो मेरी जान खुदा है।
1: जो शहर जो घर सकरंट आई सकरंट जो आवाज
2: GFM 90.8।

क्या जे वेझो गोठ आहे सुमरो खान लाशारी उतां खां असांखे जॉइन कयो आहे गुलाम हैदर लाशारी अवां जी महिरबानी गुलाम मुर्तज़ा लाशारी अवां जी महिरबानी अवां खे चवंदासीं भलीकार वेलकम चवंदासीं वॾा वॾ अवां जा ख़ुशि जो आबा जो ऐं गुलाम मुस्तफ़ा लाशारी अवांजो मोहबतूं गुलाम सरवर लाशारी ऐं थैंक यू गुलाम यासीन लाशारी भलीकार

जी जनाब गोठा आलम खान जरवार खां मोहम्मद अजीज जरवार लिखो अदा सलाम वालेकुम सलाम आई आरजे गुलनाज जो प्रोग्राम ताई पसंद आए मेहरबानी आरजे गुलनाज साहिबा यकीनन सुठो शो कंदी आ असन नेटवर्क जी तमाम सुठी आरजे है थैंक यू तवा जा नेक जज्बात आरजे गुलनाज ताई पहुंचा आई जनाब अजीज संग बदे पियो अजीज तांजो तमाम घणी मेहरबानी अजीज खोसो ए रोड़ी खां संग्राड़ खां हाफिज जमीर अहमद हसन मंगरियो बुधन पे अवां जो तमाम।

0: सुन रहे हैं जी मोरू
1: नौशहरों
0: मीरपुर खास
1: लाड़काना
0: सखर
1: गूंज रही है हर जगह पर
0: सिंध की आवाज
1: जीए FM 88 नेटवर्क
2: PM. This time check is brought to you by
3: Bank Islamani Laya, Pakistan ka pehla sharia compliant gold based financing. Sona, sirf zevar nahi, har ghar ki amanat hoti hai. Isiliye Bank Islamani Laya, Pakistan ka pehla sharia compliant gold based financing. Jisse mile 50 lakh rupay tak ki financing, 4 saal tak ki muddat ke saath. Bank Islami gold based financing se amanat ko apni jagah rehne do. RG 111-475-264 ya bankislami.com.pk par apply karein. Sharaait o zawabit lagu hain.
4: 44 saalein jo tajrubo, hazare marizin jo aitmaad, Agha Homeopathic Clinic, Home Doctor Agha Liaqat Ali Khan Pathan, DHMS Sindh, RHMP Islamabad. 44 saalein ji wasi tajrubay saan, har kisma ja aasabi amraz, jodan jasoor, maite mein jalan, gais, badhazmi, tezabiyat, gurdan ji pathri, bawasir, بے اولادی وارن جو کرن گنج پن فالج خارش ایں بین مختلف صحت جی تکلیفن لائے ماہرانہ ہومیوپیتھک صلاح ایں مؤثر علاج فراہم کرے رہا ہیں آغا ہومیوپیتھک کلینک سکھر پولیس ہیڈ کوارٹر چوک پولیس لائن سکھر ٹائمنگ چھنچر کھا خمیس صبح 9 بجے کا شام 5 بجے تائیں اپوائنٹمنٹ ایں ودی کا معلومات لائے ہیری رابطہ کریو 03 26 22 00 440
5: वेल्थ जहां माहिर डॉक्टर शेयर करते हैं सेहत की असली बात जीएफएम का हेल्थ अवेयरनेस शो होस्ट आगा जब्बार के साथ जहां मुल्क के मायानाज हेल्थ स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स सेहत से मुतल्लिक अहम टॉपिक्स पर अपना एक्सपीरियंस प्रोफेशनल राय और मुफीद मालूमात शेयर करते हैं अपनी मेडिकल एक्सपर्टीज और हेल्थ केयर ब्रांड को हजारों लिसनर्स तक पहुंचाने के लिए हेल्थ इज वेल्थ का हिस्सा बनिए हेल्थ एक्सपर्ट या प्रोग्राम स्पॉन्सर के तौर पर स्पॉन्सरशिप के लिए आज ही राबता करें आगा जब्बार 03009312700

GAFM 88 Network, Sindh ki awaaz. सिंधड़ी शाम अवांजनाओं सिंधड़ी जी शाम जमें इन पलन में तक बुध पाया एक ही वक्त GFM सखर GFM लाड़कानू GFM मेर प्रवास GFM मोरो GFM मेरापुर GFM सकरण

मैसेजिस तव्हां कंदा रहंदव त लिखजो MTI स्पेस ॾेई पंहिंजे ॻोठ ऐं शहर जो नालो लिखो, पंहिंजो नालो लिखो ऐं 888-881 ते असांखे हाणे ई मैसेज ॾियारे मोकिलियो। ॾिसंदासीं त असां सां गॾु केरु हूंदो। जेकबाबाद खां शौकत अली जखराणी ॿुधे पियो, भलीकार रहमत अली जखराणी लिखियो आहे त प्रोग्राम पसंदि आहे, तमामु घणी महिरबानी। बिल्कुलु प्रोग्राम तव्हांखे पसंदि आहे त असीं तव्हांजा थोराइता आहियूं। तमामु घणियूं महिरबानी।

गोठे सोहराब निजामाणी का मोहब्बती मंगण निजामाणी साहब जो मैसेज पहुंचो है वहां जो तमाम घणी मेहरबानी आई नंढड़ो एहसान निजामाणी तहां से गजी बुधे पियो तहां चयो प्रोग्राम ला जवाब आए तमाम घणी मेहरबानी कुर्बा वहां जा GAFM 88 Radio.

0: आज समाइन अवां जेकर असन जो आवाज कनायो पे त बाकी असा वट बचे हन 7 मिनट मैसेज शामिल करण जा ता मैसेज हाने ही मोकले छडियो
1: आप सुन रहे हैं जीए एफएम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज

जीवन समय अमलिको एमटीआई स्पेस वही पे ने गोट है शहर यो नालो लिखो पे नालो ट्रिपल 8181 दे मैसेज मोकले छ रियो ऐ गुलाम सर्वर असंगे बदे पियो अंसारी शहर जे को आहे वो अवहा लिखो पे ने गोट ओके जनाब थैंक यू जी लोको शहर लिखल है ओके रोहड़ी शरीफ है तमाम घड़ी मेहरबानी वड़ा वड़ा वहां जा साई खुश हो जो आबाद हो जो थैंक यू वेरी मच असि बुध असि वेलकम चवी भलीकार चवी हाँ मोजिज दोस्तों तमाम जगह शामिल थे चाहो था जल्दी जल्दी से लिखो MTI स्पेस गोठ शहर जो नालो लिखी नालो लिखो 8181 मैसेज मोकले ओके जनाब असि जिक्र किया गुलाम सरवर अंसारी साहब मैसेज पौतो पहरियों दफो पौतो है तो तुम तमाम घड़ी मेहरबानी खुशी थी तक बुध पे थैंक यू वड़ा वड़ वेलकम चवी जो तुम के शो जो हिस्सों बनी चुका है अमाजा ब मैसेज अगर अगर पौता तमाम घड़ी मोहब्बतों अवे भी चवी भली कार खुश हो जो।

जीवन सामीन यकीन आखिरी ट्रैक शामिल कंदासीं मैसेजन वारे हिन कंपोनेंट जो यानी जेको पहिरियों कलाक जो हिसो हूंदो आहे उनमें असां मैसेज शामिल कंदा आहियूं त उन में असां कोशिश कयूं पिया हिकिड़ो ट्रैक तव्हांखे ॿुधायूं उन खां पोइ न्यूज़ ब्रेक ते हलंदासीं जितां खां न्यूज़ ब्रेक हूंदो कमर्शियल ब्रेक खां पोइ वापसि अची अवांजूं कॉलूं शामिल कंदासीं किथे कहिड़े ॻोठ वाहिणनि वस्तियुनि खां असांखे ॿुधो पिया असीं अव्हांखे चवंदासीं भली कार तमामु घणी महिरबानी वेलकम।

तपाई मजेस दोस्तो यकिनन ब्रेक वठण लाए पाण के हलणो आहे जडे न्यूज बुधण जे लाए स्टूडियोज में अनके पहिरी तां जे लाए ट्रैक।

त पई हलूं था जबरदस्त ट्रैक ॿुधण। तेसि ताईं तव्हां नोट करे वठो, लिखणो आहे तव्हांखे MTI स्पेस ॾेई पंहिंजे ॻोठ ऐं शहर जो नालो लिखणो, पंहिंजो नालो 888-881 ते मैसेज मोकिलिजो। जबरदस्त ट्रैक आहे, इंजॉय कजो ऐं हिन ट्रैक खे ॿुधंदे ॿुधंदे न्यूज़ ब्रेक ताईं पहुचंदासीं, जे तव्हां वापसि अची तव्हांजो कॉल शामिल कंदासीं।

0: पीटीआई जे लॉन्ग मार्च ख़िलाफ़ पार्टी अंदरां ई आवाज़ उथण शुरू थी विया। तहरीक इंसाफ़ जे मर्कज़ी तर्जुमान शौकत यूसुफ़ज़ई पार्टी खे लॉन्ग मार्च अणॼातल मुदे ताईं मुलतवी करण जो मशवरो ॾेई छॾियो। शौकत यूसुफ़ज़ई पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गोहर खे लिखियल ख़त में चयो आहे त वफ़ाक़ी हुकूमत कुझु इशूज़ खे जवाज़ बणाईंदे के पी में एमरजेंसी लागू करणु चाहे थी। रियासत सां टकराउ बदिरां ॻाल्हियल लाइ रस्तो हमवार कयो वञे। चेयरमैन बैरिस्टर गोहर चयो आहे त पीटीआई जी लॉन्ग मार्च जो फ़ैसिलो बरक़रार आहे, केपी असेंबली खे टोड़ण जो को बि इरादो नाहे। सुहेल आफ़रीदी खे नाहल क़रार नथो ॾेई सघिजे, मुतबादिल ते बि मुशावरत नाहे थी।
1: देखिए मार्च ये इनकी कोई कैपेसिटी नहीं है मार्च करने की, इन्होंने मुलतवी किए हैं, ये मार्च नहीं कर सकते हैं। अब ये जो है डेफिनेटली मीडिया पे आते हैं भड़के मारते हैं, मैं कहता हूँ कैपेसिटी नहीं है मार्च करने की। अगर इनकी कैपेसिटी मार्च करने की होगी तो 27 को हो जाता, 4 को भी नहीं होगा।
0: पीटीआई में मार्च करण जी हिम्मत ही ना है। 4 अक्टूबर ते भी लॉन्ग मार्च न थींदो, मार्च थियणो हुजे हा त 27 सेप्टेम्बर ते ई थी वञे हा। केपी जे गवर्नर फैसल करीम कुंडी चयो आहे त केपी में दहशतगर्दी खे कंट्रोल करण पीटीआई जे वस में ना है। डायलॉग हणण सां कुझु न थींदो, कुझु कम करणो पवंदो। पाकिस्तान जी अमन वारी ख़्वाहिश खे कमज़ोरी न सम्झो वञे। अफ़ग़ान सरज़मीन तां थींदड़ हर हमले जो भरपूर जवाब ॾिनो वेंदो। सुध समाव वारो वज़ीर अताउल्ला तरण चयो आहे त अफ़ग़ान तालिबान रजीम खे दहशतगर्दी वारी माइंड सेट मां निकिरणो पवंदो। अफ़ग़ानिस्तान में दहशतगर्दनि जा थाक मौजूदु आहिनि। अफ़ग़ानिस्तान जा घणा मसला अस्करियत पसंदाणी सोच जो नतीजो आहिनि। अफ़ग़ान अवाम खे पंहिंजे मुस्तक़बिल बाबति फ़ैसिलो करण जो हक़ मिलणु घुरिजे। कतर ज़रिए 7 नुक़्तनि ते ॿधल मनसूबो अमरीका खे मोकिलियो आहे। हाणे ईरान खे अमरीकी जवाब जो इंतज़ारु आहे। ईरानी परॾेही वज़ीर अब्बास राक्षी चयो आहे त गुज़िरियल ॾींहं कतरी सालिस सां थियल मुलाक़ात में ईरानी मौक़िफ़ अमरीका ताईं पहुचाए छॾियो आहे। व्हाइट हाउस जो जवाब अॼु तेहरान खे मिली वेंदो। एटमी प्रोग्राम बाबति बि गुमराह कंदड़ प्रोपेगेंडा कई पई वञे। ईरान जे मौक़िफ़ में क़ाबिल चक नाहे आई। आपदा हुर्मुज़ बाबति शर्त बरक़रार आहिनि।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: GAFM 88 सिंध की आवाज।
4: छा अमा जो गाड़ी खरीद करण जो इरादो आहे
5: या पंहिंजी पुरानी गाड़ी विकणण चाहियो था त पोइ अचो बालाज मोटर्स मोरो ते,
4: जिते तव्हां खे मिलन थियूं टोयोटा, सुजुकी, होंडा,
5: किया, स्पोर्टेज ऐं ॿियनि कंपनियुनि जूं मुख़्तलिफ़ गाॾियूं, जिन में जापानी इम्पोर्टेड ऐं हाइब्रिड गाॾियूं पिण शामिल आहिनि।
4: तव्हां जी पसंद, ज़रूरत ऐं बजट मुताबिक गाॾी जी चूंड में बहितरीन सहकार।
5: बालाज मोटर्स मोरो ते हर क़िस्म जी गाॾियुनि जी ख़रीद ऐं विकिरो जी सहूलियत मौजूदु आहे, मुनासिब अघनि ऐं बहितरीन डील सां।
4: इन खां अलावा पूरे पाकिस्तान में अव्हां जिते बि हुजो पंहिंजी गाॾी बुक कराए सघो था।
5: बालाज मोटर्स नस्त गार्डन सिटी दादू रोड मोरो, प्रोप्राइटर अली बख्श खासकेली। अॼु ई राब्तो करियो 03002963322।
6: तव्हां जो ख़्वाबु आहे डॉक्टर ऑफ फिज़िकल थेरेपी, नर्स या हेल्थ प्रोफेशनल बणजण, त पोइ तव्हां लाइ आहे हिकु बहितरीन मौक़ो। सखर जो मोतबर इदारो सिराजुद्दीन इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज में इन सेशन लाइ दाख़िलाऊं जारी आहिनि। 4 सालनि जा डिग्री प्रोग्राम्स GBSN, GBSM, 5 सालनि जो प्रोफेशनल प्रोग्राम डॉक्टर ऑफ फिज़िकल थेरेपी DPD, 2 सालनि जा डिप्लोमा प्रोग्राम्स LHV, CMW, CNA, ख़ासि सहूलियतूं, स्कॉलरशिप मौजूद। 2 सालनि जे कोर्सेस में एडमिशन बिल्कुल फ्री, जॾहिं त DPD प्रोग्राम में सिर्फ़ 10,000 रुपया दाख़िला फीस ऐं फीस सेमेस्टर सिर्फ़ 60,000 रुपया। हिते तव्हां खे मिलंदा एयर कंडीशन क्लासरूम, जदीद लेबोरेटरीज, मुकमल लाइब्रेरी, तजुर्बेकार फैकल्टी, हॉस्टल, पिक एंड ड्रॉप ऐं फिज़ियोथेरेपी OPD जी बहितरीन सहूलियत। ही इदारो सिंध हुकूमत जे हेल्थ डिपार्टमेंट खां मंज़ूर शुदा ऐं पाकिस्तान नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल खां तस्लीम शुदा लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी जो डिग्री याफ्ता आहे। यादि रखो, सीट्स महदूद आहिनि, तंहिं करे पंहिंजे रोशन मुस्तक़बिल लाइ अॼु ई दाख़िला वठो।

0: ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਕੋਰਸਿਸ ਓਟੀ ਹੈਲਥ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਐਂ ਬਿਆ ਸਬ ਕੋਰਸਿਸ ਪਿੰਡ ਥਿੰਦਾ ਆਹਨ ਐਡਰੈਸ ਸਿਰਾਜੁਦੀਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸੈਕਟਰ 5 ਸਖਰ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਮੇਨ ਬਾਈਪਾਸ ਰੋਡ ਸਖਰ ਰਾਬਤੋ 0711-5635-642 ਆਏ 0310-8166-111
1: कॉलेज ऑफ एजुकेशन खैरपुर में बीएड डेढ़ साल बीएड अढ़ाई साल जो दाखिला शुरू थी वयू आहिन जेकडे तवां जो ख्वाब उस्ताद बनजण आहे तही बेहतरीन मौको हथन मां न वणायो हाणे सिंध हुकूमत जे तालीमी शोबे सां लागापियल केतरीन ई नौकरीन लाइ बीएड डिग्री लाज़मी बणजी रही आहे तंहिं करे अॼु ई दाखिला
2: सकरण के हो तो आवाज भी सकरण की है
3: सुनते रहो जी एफ एम 90.8।

0: तव्हां जो पहुचे शामिल न थिए, इहो नामुमकिन आहे।
1: न तव्हांखे तव्हांजो मैसेज असल में असां ॿाराड़ी में वेठा आहियूं, बैलेंस कोन हो, इन करे मूं तुंहिंजो
0: ज़ाती नंबर ते मां नथो शामिल करे सघां, मजबूरी आहे। चवंदा आहिनि आशिक मजबूर आहे, तंहिंजे करे बैलेंस न मोकिलियो, मयार वरी मूंखे था ॾियो। ईअं त सुठो कोन्हे कंहिं महिमान खे मानी खाराइजे, बोर्ड न ॾिजे ऐं पोइ चइजे तो खाई ढो कोन कयो, त पोइ हुन महिमान जो कहिड़ो ॾोहो वीचारे जो। कॾहिं कॾहिं न रुखी मानी महिमान कोन खाई, तंहिंखां न सलाह कजे, सुठी ॻाल्हि आहे। मैसेज मोकिलियो अथव पर्सनल ते, पर्सनल नंबर असांजा बंदि हूंदा आहिनि ऐं बिल्कुलु खुलियल ई कोन हूंदा, तव्हां ट्राई कंदो त बिल्कुलु बंदि हूंदा आहिनि। इन जे करे जेकर तव्हां ॾिसो हिकिड़ी ॻाल्हि, तमामु पुराणा ॿुधंदड़ आहियो न, हाणे इहा ॻाल्हि असांजे ॿुधंदड़नि ताईं बि कनवे थिए पई, त जॾहिं मैसेज कयो था त 88 81 ते मोकिलियो, न शामिल थियो त असीं ॾोहो ॾंढ भरे ॾींदासीं। ठीकु है, थैंक यू, लख तरह। ओके जनाब, साज़े आवाज़ जे साथ में केरु हूंदो असां गॾु? नंबर आहे 2334-3025-786। हिन नंबर ते असां गॾु ॾिसंदासीं केरु महिरबानी किथां खां ॿुधे पियो। हलो, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम
0: साईं, केरु साहब ऐं किथां खां? जी ज़ुल्फ़िकार चयो साहब, तव्हां सां गॾु ॿियो केरु पियो ॿुधे? महिरबानी, लख थोर आहे साईं, ख़ुशि हुजो। जी जनाब, साज़ आवाज़ साथ में जेकी महिरबानी असां सां गॾु, यकीन नसीब हुननि सां गॾु।

5252786 बड़ी 340 25 7786 ते अवां जी दी कॉल कदा शामिल दिसरासी दा सगद।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: आमीन सुम आमीन खुश हो जो। थैंक यू साईं पठान खान पचकेवारा साहब। यह है GFM 88 रेडियो नेटवर्क सिंधड़ी जी शाम अवां जे नाम। कॉल ते केर आहे? हेलो अस्सलाम वालेकुम। साईं केर साहब ऐं किथां खां?
1: साईं खीतर जमला खां मंज़ूर चालियो।
0: जी मंज़ूर, तव्हां सां गॾु बि केर पियो ॿुधे? अवां सां गॾु बि केर थो ॿुधे? जी थैंक यू महिरबानी मिठा माण्हू लखथ वारा, ख़ुशि हुजो आबाद हुजो। ॾिसंदासीं त हाणे असां गॾु कॉल ते केर आहे। हलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, केर साहब ऐं किथां खां? जी साईं अवां सां गॾु बि केर पियो ॿुधे? जी जी जी जी जी महिरबानी साईं। वालेकुम अस्सलाम, ज़रूर ॿुधाईंदासीं। थैंक यू साईं महिरबानी, लख थोरा। जी जनाब, कॉल ॾिसंदासीं त कंहिंजी असां सां शामिल थिए थी ऐं केरु हूंदो असां सां गॾु। हलो अस्सलाम वालेकुम। केर साहब ऐं किथां खां?
1: इरफान अली थियो, गुलाबी संगत खबड़ी बिट तालका सालेपर ज़िला सखर खां।
0: तमामु घणी महिरबानी इरफान, वेलकम चवंदासीं तव्हांखे।
1: थैंक यू सो मच यूनिस खां, तव्हां कीअं आहियो? ठीकु ठाक लॻा पिया आहियो तमामु।
0: अलाह पाक जा किरोड़े करम आहिनि, तव्हांजूं मोहबतूं ऐं अवां सां गॾु ॿियो केरु पियो ॿुधे?
1: सलाम सिस्टर मिसिस अली फौजिया फरदाना, सिस्टर दुआ खान, रायत तुमरो, मंताज तुमरो, हुसैन बशिस्तरो, हाफिज़ गुलाम अहमद छांबल ऐं लुकमान चाचर अब्दुल्ला बंगवार बदल चमाणी, जेके दोस्त ॿुधनि था सभिनी खे इरफान अली चइबो पारा खुड़ा सर सलाम।
0: वालेकुम असलाम, तमामु घणी महिरबानी, मोहबतूं ऐं वॾा वॾ सुहिणा साईं।
1: थैंक यू सो मच,
0: ख़ुशि हुजो, अलाह हाफ़िज़।

0: जनाब कॉल ते केर हो तो दिसंदासीं। हलो अस्सलाम वालेकुम। बदरदीन तव्हां जी मां पहिरीं कॉल अटेंड करे चुको आहियां शायदि। अच्छा अच्छा ठीकु आहे, तव्हां सां गॾु ॿियो केरु पियो ॿुधे? साईं हाणे हींअर आयो हाणे हींअर बहस कोन था कयूं, महिरबानी तव्हां सां गॾु केरु पियो ॿुधे? जी जनाब ॾिसो रेडियो आहे, ऑफिशियल प्रोग्राम हली रहियो आहे, जेका शिकायत आहे ऑफ एयर तव्हां मूंखे कॉल करे सघो था, यानी जॾहिं मां ऑफ एयर हुजां तव्हां पंहिंजी का ॻाल्हि ॿुधाए सघो था, पर ही रेडियो ऑन एयर हज़ारे लखे किरोड़े माण्हू ॿुधनि था, इन जे लाइ माज़रत। ॾिसंदासीं त हाणे असां सां गॾु कॉल ते केरु आहे। हलो अस्सलाम वालेकुम। जी केरु साहब ऐं किथां खां? जी अवां सां गॾु केरु पियो ॿुधे? जी जी ऐं महिरबानी तव्हांजो कॉल करण जे लाइ मिठा भाउ। ओके जनाब, कंहिं कंहिं कॉल में आवाज़ घटि हूंदो आहे, उन जे करे ईअं थींदो आहे जो आवाज़ उहा कॉल पंहिंजी क्वालिटी पेश न करे सघंदी आहे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी अवां सां गॾु केरु पियो ॿुधे? जी जी तमामु घणी महिरबानी मिठो माण्हू, थैंक यू। ओके थैंक यू। जी दोस्तो, छाकाणि शो जो टाइम घटि आहे, मुख़्तसिर ॻाल्हि ॿोल कयूं पिया ऐं मुख़्तसिर ॻाल्हि ॿोल में कोशिशि कयूं पिया त हिकिड़ो नंढो ब्रेक हूंदो ऐं हुन सां गॾोगॾु शामिल हूंदासीं अव्हांजे कॉल समेत।
1: बैंक इस्लामी लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग। सोना सिर्फ जेवर नहीं, हर घर की अमानत होती है, इसीलिए बैंक इस्लामी लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग, जिससे मिले 50 लाख रुपए तक की फाइनेंसिंग 4 साल तक की मुद्दत के साथ। बैंक इस्लामी गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग से अमानत को अपनी जगह रहने दो। जी 111-475-264 या bankislami.com.pk पर अप्लाई करें। शराइत और ज़वाबित लागू हैं।
2: छा तवां जो ख्वाब आए डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी, नर्स या हेल्थ प्रोफेशनल बणजण, तो पोए तवां लाए आए एक बेहतरीन मौको। सखर जो मोतबर इदारो सिराजुद्दीन इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज में इन सेशन लाए दाखिलाऊं जारी आहिन। 4 सालन जा डिग्री प्रोग्राम्स GBSN, GBSM, 5 सालन जो प्रोफेशनल प्रोग्राम डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी DPD, 5 सालन जा डिप्लोमा प्रोग्राम्स LHV, CMW, CNA, खास सहूलतूं, स्कॉलरशिप्स मौजूद। बिन सालन जे कोर्सेज में एडमिशन बिल्कुल फ्री। जरे त DPD प्रोग्राम में सिर्फ 10,000 रुपया दाखिला फीस, आई फीस सेमेस्टर सिर्फ 60,000 रुपया। हिते तव्हां खे मिलंदा एयर कंडीशन्ड क्लासरूम्स, जदीद लेबोरेटरीज, मुकमल लाइब्रेरी, तजुर्बेकार फैकल्टी, हॉस्टल, पिक एंड ड्रॉप, आई फिजियोथेरेपी, OPD जी बेहतरीन सहूलत। ही इदारो सिंध हुकूमत जे हेल्थ डिपार्टमेंट खां मंजूर शुदा ऐं पाकिस्तान नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल खां तस्लीम शुदा मेडिकल यूनिवर्सिटी जो डिग्री याफ्ता आहे। याद रखो, सीट्स महदूद आहिनि, तंहिं करे पंहिंजे रोशन मुस्तक़बिल लाइ अॼु ई दाख़िला वठो। ऐं हिकु ख़ासि ॻाल्हि, हिते मेडिकल जा शॉर्ट कोर्सिस, OT, हेल्थ टेक्नीशियन ऐं ॿिया सभु कोर्सिस पिण थींदा आहिनि। एड्रेस सिराजुद्दीन एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स, सेक्टर 5, सखर टाउनशिप, मेन बाईपास रोड, सखर। राबितो 07-11-56-35-642 ऐं 03-10-81-66-111।
3: हेल्थ इज वेल्थ, जहां माहिर डॉक्टर शेयर करते हैं सेहत की असली बात। GFM का हेल्थ अवेयरनेस शो, होस्ट आगा जब्बार के साथ, जहां मुल्क के मायानाज हेल्थ स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स सेहत से मुतल्लिक अहम टॉपिक्स पर अपना एक्सपीरियंस, प्रोफेशनल राय और मुफीद मालूमात शेयर करते हैं। अपनी मेडिकल एक्सपर्टीज और हेल्थ केयर ब्रांड को हजारों लिसनर्स तक पहुँचाने के लिए हेल्थ इज वेल्थ का हिस्सा बनिए, हेल्थ एक्सपर्ट या प्रोग्राम स्पॉन्सर के तौर पर। स्पॉन्सरशिप के लिए आज ही राब्ता करें। आगा जब्बार 03009312700।
4: 44 साल जो तजुर्बो, हजारे मरीज जो एतमाद, आगा होम्योपैथिक क्लिनिक, होम्यो डॉक्टर आगा लियाकत अली खान पठान, DHMS सिंध, RHMP इस्लामाबाद। 44 साल जी वसी तजुर्बे सा हर किस्म जा आसाबी अमराज, जोड़न जो सूर, मैदे में जलन, गैस, बदहजमी, तेजाबियत, गुर्दन जी पथरी, बवासीर, बे औलादी, वारन जो किरण, गंजपण, फॉलेज, खारिश, बेन मुख्तलिफ़ सेहत की तकलीफ़ुन लाए माहिराना होम्योपैथिक सलाह मौसर इलाज फराम रिया आहिने। आगा होम्योपैथिक क्लिनिक सखर, पुलिस हेडक्वार्टर चौक, पुलिस लाइन सखर। टाइमिंग छंछर खां खमीस सुबह 10 बजे का शाम 5 बजे ताई। अपॉइंटमेंट आई वधिक मालूमात लाए हियरी राब्तो करियो 03 26 22 00 440।

0: जी जनाब डिसनासी थाने से अगर कॉल पे के रहा है। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
1: सर
0: वालेकुम फहीम चांदो साहब खुश आयो ठीक आयो
1: सर अलहमदुल्ला
0: तुम शुक्र अलहमदुल्ला केर पे बुधे
1: सर मुझा कुछ खास दोस्त है भाईर बदरदीन चांडियो
0: जी जी
1: अचना चांडियो ज्ञानदार खान चांडियो जुल्फकार चांडियो गमशाद चांडियो बाबर चांडियो
0: जी जी
1: सर चांडियो
0: मेहरबानी मेहरबानी लख थोरा साईं
1: सलाम पगन जी
0: वालेकुम अस्सलाम कुर्ब साईं कुर्ब लख थोरा ताजा खुश हो जो आबाद हो जो थैंक यू।

0: सलाम पेश कनि था आयो अॼु प्रोग्राम जी तारीफ़ कनि था।
1: मोहबतूं आहिनि नवाबी संगत जूं, तव्हां सभिनी जूं महिरबानियूं, ख़ुशि हुजो, आबाद हुजो।
0: आमीन। माशाला साईं असांजे लाइ इंटरमेंट ईअं आणींदा कयूं, ईअं असांजी दिलि ख़ुशि कंदा कयूं।
1: साईं असीं खादिम अव्हांजा, अलाह करे आबाद हुजो।
0: आमीन। असीं बि अव्हांजा खादिम आहियूं।
1: जुग जुग जीओ, जुग जुग जीओ, सदाई सुखिया हुजो साईं। जी मज़े सामईन केर हुंदो जेको हाणे असां सां जुड़ंदो ऐं मुख़्तसर ॻाल्हि ॿोल कंदो। नंबर सफ़ा सवलो आहे 0334-3525786। ॾिसंदासीं कॉल ते केर आहे। हैलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अलहमदुल्ला, केर साहब ऐं किथां खां?
0: सरदार
1: छा हाल आहे साईं? मुंहिंजो ख़ुशि आहियो, ठीकु आहियो। अलहमदुल्ला, अलाह पाक जा किरोड़े करम आहिनि, रब पाक जो रहमतूं आहिनि, अव्हां जो प्यार ऐं पंहिंजाए पए ऐं खोड़ सारियूं दुआऊं आहिनि। तव्हां सां गॾु केरु पियो ॿुधे? जी जी साईं, महिरबानी, तव्हांजी सॼी संगत जे सिर जो ऐं घर जो ख़ैरु हुजे।
0: ख़ुशि रखंदो साईं। अॻ में बि तव्हांखे अर्ज़ु कयो प्रोग्राम में, असांखे हिकिड़ो कलाम ॿुधायो, अॼु जे टाइम आहे ॿुधाईंदो
1: साईं। असल में कंहिंजो कलाम था ॿुधण चाहियो?
0: साईं अब्दुल गफ़ूर जो आहे।
1: साईं मां ॾिसंदसि, असल में पुराणा गाना घटि हूंदा आहिनि म्यूज़िक लाइब्रेरी में, ॻोल्हे ॻोल्हे किथां ॿुधाईंदसि, पर अॼु त छाकाणि टाइम तमामु घटि आहे त फरमाइश पूरी नथो करे सघां। हिन शो जो पहिरियों कलाकु हूंदो आहे उन में मां प्ले करे वठंदा, हिन में बैकग्राउंड में हलनि पिया गाना। बहरहाल इनशाला हिकु ॾींहुं ज़रूरु अहिड़ो ईंदो जंहिं ॾींहुं तव्हांजी फरमाइशूं पूरी करे वठंदसि। न सर, हाणे वरी सूमर ते साईं। न न, मुंहिंजो को कुसुर कोन्हे, मुंहिंजो को कुसुर कोन्हे। जेॾी महिल काल लॻे तेॾी महिल मां खणंदुमि। ठीकु आहे साईं।
0: सरदार, ॿियो को अर्ज़ु
1: आहे? हुकुम कयो साईं।
0: साईं
1: अर्ज़ु इहो आहे, कंहिं और जे साहिबा जो बिज़ी हुजणो हूंदो, को ज़ाती मजबूरी हूंदी, मूंखे हिन हवाले सां ख़बर कोन्हे। मां पुछा कंदुसि पंहिंजे ऑफिसर्स खां, बॉसिस खां, ऐं तव्हांखे ॿुधाईंदासीं। फ़िलहाल ऑन ईयर मूंखे का ख़बर कोन्हे। ठीकु आहे सर, नेक्स्ट प्रोग्राम में तव्हांखां ठीकु आहे भले पुछियो। असल ॻाल्हि इहा आहे त सभई आरजी पंहिंजी महिनत कनि था ऐं अलाह साईं तव्हांखे ख़ुशि रखे, मोहबतूं ॾियण लाइ लखे अहसान। जी जनाब, साज़े आवाज़ साथ जा आख़िरी लम्हात। सादिक फ़क़ीर जी सदा हवा में गूंजे पई, अवां ॿुधो पिया GFM 88 रेडियो नेटवर्क खे। अवां जो RJ यूनिस बकारी अवां सां मुखातिब आहे, ॾिसंदासीं त कॉल ते केरु। हलो, अस्सलाम वालेकुम। जी जी, अवां सां गॾु केरु पियो ॿुधे? जी जी, महिरबानी साईं।

ॾिसंदासीं कॉल ते हाणे असां घर केरु आहे। हलो अस्सलाम वालेकुम। हलो अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, शोर ऐं गोड़ खां बचण जे लाइ प्लीज़ जे तव्हां कॉल कयो था कोशिशि कयो त हवा न हुजे, गोड़ न हुजे, साफ़ सुथरी कॉल हूंदी, पूरी दुनिया ॿुधंदी, ख़ुशि थींदी। इन जे करे इहो ख़्यालु रखो त तव्हांजी कॉल खे सभई माण्हू ॿुधनि, सुठो लॻे। ॾिसंदासीं कॉल ते केरु आहे। हलो अस्सलाम वालेकुम। हलो अस्सलाम वालेकुम।

0: आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज
1: की गवाही होता है कि मई 2022 में क्या हुआ और नवंबर 2024 में क्या हुआ। मुज़ाकरात से कोई गुरेजा नहीं है, लेकिन मुज़ाकरात संजीदा होने चाहिए। मुज़ाकरात की बुनियाद ये है कि उन्हें रिहाई चाहिए अपने लीडर की। हमने बारहा कहा है कि उसका फोरम अदालतें हैं, हुकूमत नहीं है, क्योंकि कन्विक्शन के बाद हुकूमत का रोल खत्म हो जाता है। जुडिशियल प्रोसेसेस के होते हुए आप कहें कि जी जलसे जुलूस से, एहतजाज से, शहरों पे चढ़ाई करके आपने ताकत का इस्तेमाल करके वो मकसद हासिल करने जो कि नहीं किया जा सकता अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन।
2: हुकूमत पीटीआई सां गालिन खां कॾहिं बि इनकार नाहे कयो। पीटीआई गालिन में लीडर जी आज़ादी चाहे थी। केतिरा ई भेरा ॿुधाए चुका आहियूं त बानीअ जी आज़ादी हुकूमत सां न पर अदलिया सां ॻंढियल आहे। कानून वारे फाकी वज़ीर सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ पीटीआई खे संजीदा गालिन जो मशवरो ॾींदे चयो त गालिन खे बानीअ जी आज़ादी सां मशरूत करण वारो अमल ठीक नाहे। हू चाहिनि था त जलसनि जलूसनि ज़रिए बानीअ खे आज़ाद कराइनि, जेको मुमकिन ई नाहे। सुप्रीम कोर्ट बानी जी चकास जो हुकुम ॾिनो हो, जेको थी वियो आहे। हुकूमत अमल में खोट आहे त अदालत खे ॾिसणो आहे। जलसनि जलूसनि सां कुझु न थींदो। पीटीआई जी लॉन्ग मार्च ख़िलाफ़ पार्टी अंदरां ई आवाज़ उथणु शुरू थी विया। तहरीक इंसाफ़ जे मर्कज़ी तर्जुमान शौकत यूसुफ़ज़ई पार्टीअ खे लॉन्ग मार्च अणॼातल मुदे ताईं मुलतवी करण जो मशवरो ॾेई छॾियो। शौकत यूसुफ़ज़ई पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गोहर खे लिखियल ख़त में चयो आहे त वफ़ाक़ी हुकूमत कुझु इशूज़ खे जवाज़ बणाईंदे केपीअ में इमरजेंसी लागू करणु चाहे थी। रियासत सां टकराव बदिरां ॻाल्हियुनि लाइ रस्तो हमवार कयो वञे। चेयरमैन बैरिस्टर गोहर चयो त पीटीआई जी लॉन्ग मार्च जो फ़ैसिलो बरक़रार आहे। केपी असेंबलीअ खे टोड़ण जो को बि इरादो नाहे। सोहेल आफरीदीअ खे नाअहल करार नथो ॾेई सघिजे। मुतबादल ते बि मुशावरत नाहे थी।
3: देखिए मार्च ये इनकी कोई कैपेसिटी नहीं है मार्च करने की, इन्होंने मुलतवी किए हैं, ये मार्च नहीं कर सकते हैं। अब ये जो है डेफिनेटली मीडिया पे आते हैं बढ़ के मारते हैं। मैं कहता हूँ कैपेसिटी नहीं है मार्च करने की। अगर इनकी कैपेसिटी मार्च करने की होगी तो 27 को हो जाता, 4 को भी नहीं।

0: कि वज़ीर अत्तार चयो त अफ़गान तालिबान रजीम खे दहशतगर्दी वारे माइंड सेट मां निकिरणो पवंदो। अफ़गानिस्तान में दहशतगर्दनि जा थाक मौजूदु आहिनि। अफ़गानिस्तान जा घणा मसला अस्करियत पसंदाणे सोच जा नतीजो आहिनि। अफ़गान अवाम खे पंहिंजे मुस्तक़बिल बाबति फ़ैसिलो करण जो हक़ मिलणु घुरिजे। कतर ज़रिए 7 नुक़्तनि ते ॿधल मनसूबो अमरीका खे मोकिलियो आहे। हाणे ईरान खे अमरीकी जवाब जो इंतज़ारु आहे। ईरानी परॾेही वज़ीर अब्बास राग़ची चयो आहे त गुज़िरियल ॾींहुं कतरी ट्रैकरनि सां थियल मुलाक़ात में ईरानी मौक़िफ़ अमरीका ताईं पहुचाए छॾियो। व्हाइट हाउस जो जवाब अॼु तहरान खे मिली वेंदो। एटमी प्रोग्राम बाबति बि गुमराह कंदड़ प्रोपेगेंडा कई पई वञे। ईरान जी मौक़िफ़ में का बि लचक नाहे आई।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
0: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

आप सुन रहे हैं जी ए एफ एम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: It's 8 p.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News. आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN News.

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: बैन, तू ना मेरा हेटर, तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा, विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
3: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
2: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: It's 9 PM. This time check is brought to you by
1: White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: जेको थी वयो हुकूमत अमल में खोट आहे त अदालत के ही ॾिसणो आहे जलसन जलूसन सां कुछ न थींदो

0: सिंध के माथे का झूमर
1: DFM88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज
3: कोक स्टूडियो सीजन 14

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: कोक स्टूडियो सीजन 14।

0: जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम अव्हां जी स्किन खे बणाए फ्रेश सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अव्हां खे रेडियंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान वाइट एश ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज
2: कुक स्टूडियो Season 14.

0: 맞았잖아.
1: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: Coke Studio, Season 14.

0: देखिए मार्च ये इनकी कोई कैपेसिटी नहीं है मार्च करने की, इन्होंने मतलब किए हैं ये मार्च नहीं कर सकते हैं। अब ये जो है डेफिनेटली मीडिया पे आते हैं बढ़ के मारते हैं, मैं कहता हूँ कैपेसिटी नहीं है मार्च करने की, अगर इनकी कैपेसिटी मार्च करने की होगी तो 27 को हो जाता, 4 को भी नहीं होगा।
1: पीटीआई में मार्च करण की हिम्मत ही ना है, 4 अक्टूबर से भी लॉन्ग मार्च न थो, मार्च थियण हुए हाँ तो 27 सेप्टूबर से ही थी वे हाँ। खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर फैसल करीम कुंडी जो चवण है तो केपी में दहशतगर्दी के कंट्रोल कर पीटीआई की वस की गाल ना रही, डायलॉग हणन से कुछ न थो, कम करो पव।
2: वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पारां लंडन स्टॉक जो दौरो, ओपन मार्केट की तकरीब में शिरकत। तकरीब में खिताब कंदे शहबाज शरीफ चयो त पाकिस्तान मईशत के मजबूत करण लाए घणो कम कयो आहे, मईशत जे माइक्रो इस्तेकाम बाद मैक्रो इस्तेकाम ते कम करे रहा आहियूं।

सां हाराए रहियो आहे। तेहरान खे एटमी हथियार हासिल करण न ॾींदासीं। डायर सदर जे डी वेंस चयो त ईरान वापारी जहाज ते हमला करे इस्लामाबाद वाइदे जी भजकड़ी कई, जंहिं सबबि मुफ़ाहमत जो अमल मुतासिर थियो। पर ॾेई वज़ीर मार्को रूबियो चयो त ईरान वटि एटमी हथियार आया त समूरी दुनिया खे ब्लैकमेल कंदो, जेको थियण न ॾींदासीं।

0: सिंध के वे वजीर सैयद मुराद अली शाह की सदारत हेठ पुलिस सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स की गडियल मनसूबे बाबत अहम इजलास डाणे रिथाबंदी वाल खातन के मनसूबे की टेक्निकी और मालियाती जांच जल्द मुकम्मल करण की हिदायत। मुराद अली शाह चयो त मुस्तकबिल के चैलेंजेस के मुंह डेण लाइ पुलिस के जदीद टेक्नोलॉजी से जोड़ियो वे।
1: पाकिस्तान की तमाम सियासत एक टॉपिक पर डिस्कस कर रही है, वो है एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स का कयाम। आज पूरा पाकिस्तान बात कर रहा है कि आपको नए इंतजामी यूनिट्स पे जाना होगा। अमेंडमेंट 18वीं तरमीम के बाद वो शायद लोगों को शायद यह कंफर्म बात है, वो लोगों को डिलीवर करने में नाकाम हो गया। 2026 में हम खड़े हैं और 2026 में मेरा आपका शहर की मैं नहीं कह रहा बैन अल अकवामी गरीबे कह रहे हैं, ये दुनिया का तीसरा और चौथा पत्थर ही रहने वाला शहरों में शुमार होने लगे। वो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के कयाम पर और कहीं तक सूबों के कयाम पर बातचीत जो है वो चल रही है। इसका मतलब ये हुआ कि 10-12 साल बाद पाकिस्तान को हमारी बात आखिरकार समझ आ ही गई कि आपको ऑल्टरनेट पे जाना होगा, मौजूदा जो गवर्नेंस मॉडल है उसको चेंज करना होगा। कहने को हम जमहूरी मुल्क हैं और जमहूरी मुल्क में जमहूर ही एम्पावर नहीं हो रहा तो फिर ऐसी जमहूरियत का क्या भाई अचार डाल रहे हैं। अल्लाह करे कि जो पाकिस्तान के कर्ता धरता है संस्पंदन करे उनमें और लोगों को जमहूर को फैसिलिटेट करने में सहूलत देने में ये निजाम अपना हिस्सा डाल सके, अपना किरदार अदा कर सके। मेरी दुआ
0: हाणे तरमीम नाकाम थी वई आहे। नवा इंतिज़ामी यूनिट अंटर आहिनि। सिंध में मंडो निज़ाम ऐं पंजाब में वन वुमेन शो हली रहियो आहे। सिंध असेंबली में अपोज़िशन लीडर अली खुर्शीदी चयो आहे त अरिड़हीं तरमीम को लाभ न ॾेई सघी आहे, नवनि इंसामी यूनिट्स तक वञणो पवंदो। हुकूमती निज़ाम वारो मॉडल हाणे तब्दील थियणु घुर्जे। वफाकी घरू वज़ीर मोहसिन नकवी पारां कराचीअ में आया चंद्रीगढ़ रोड ते घरू वज़ारत जे आफ़ीस जो दौरो। ख़िदमत मर्कज़ जो माइंड प्लान 10 ॾींहनि अंदरि तयारु करे पेश करण जी हिदायत। मोहसिन नकवी चयो ग्रैंड ख़िदमत मर्कज़ में घरू वज़ारत सां लाॻापियल समूरनि इदारनि जा काउंटर मौजूदु हूंदा। पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड, हथियारनि जा लाइसेंस, मुख़्तलिफ़ NOCs ऐं ॿियूं सहूलियतूं फराहम कयूं वेंदियूं। ख़िदमत मर्कज़ में शहरनि खे मुख़्तलिफ़ सहूलियतूं हिकु ई हंधि ते फराहम करण जो इंतज़ाम कयो वेंदो। सिंध असेंबली जी घरू मामलनि वारी स्टैंडिंग कमेटी जी चेयरपर्सन सिंध फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी ते घबराई यकीनी बणण जी हिदायत करे छॾी। परियाल तालपुर जी सदारत हेठ इजलास में सूबाई घरू वज़ीर सियाल हसन लंजार ऐं ॿिया शरीक। परियाल तालपुर चयो आहे त जदीद फॉरेंसिक लैब पुलिस प्रोसिक्यूशन ऐं अदालतनि खे तस्दीक थियल साइंसी सबूत फराहम कंदी। फॉरेंसिक लैब खे जदीद असराइतो ऐं तस्दीक थियल साइंसी इदारो बणाइणो पवंदो। सकरण में सिंध जे नामवर सियासतदान इमदाद मोहम्मद शाह जी 22वीं वर्सीअ जी मुनासिबत सां SUP पारां जलसो, वॾे अंग में कारकुननि जी शिरकत। SUP सदर सैयद ज़ैन शाह ऐं बलोचिस्तान मां आयल सियासी अॻवान जलसे में मौजूदु।

0: पुट समेत कतल कादिर शाख वट हथियारबंदन फायरिंग करे गुलाम हुसैन जाफरी ए संदस मासूम पुट अब्दुल सतारा के कतल कयो। पुलिस मूजिब वाक्यो कारण जे तकरार तां पेश आयो आहे। वधीक जांच कई पई वञे। पी ए पुट जा लाश घर पहुंचण ते घर में कोहराम अची वियो। सक्कर में वधंदड़ बदमनी ऐं मक़तूल सदाम लाशारी जे कातिलनि जी गिरफ़्तारी लाइ वकीलनि जो धरणो। वकीलनि ऐं शहरियुनि सिटी पॉइंट बाईपास ब्लॉक करे एहतजाज कयो। ट्रैफिक मुअतल, गाॾियुनि जूं कतारूं लॻी वियूं। मुज़ाहिरीन चयो त सक्कर ज़िले में बदमनी वधी वई आहे। चोरियूं, पुरूं ऐं दाड़ा रोज़ जो मामूल बणियल आहिनि। केतिरा ई महीना गुज़रण बावजूद सदाम लाशारी जे कातिलनि खे गिरफ़्तार नाहे कयो वियो। अमान अमान बहाल कराए सदाम लाशारी जे कातिलनि खे गिरफ़्तार कयो वञे। कादिरपुर में पैसनि जी ॾेती लेतीअ तां पुलिस चौकी अंदर ॿिनि धुरनि में झेड़ो, अहलकार समेत 6 ॼणा ज़ख़्मी। भोटा बिरादरी जे ॿिनि धुरनि में झेड़े दौरान लठियूं लॻण सबबि अहलकार ज़मीर बुलो, कुर्बान भुट्टो, आदम लुकमान ऐं ॿिया ज़ख़्मी थी पिया अस्पताल मुंतक़िल।
1: मॉडल ओपन ए आई खे ई परेशान करे छॾियो। चैट जीपीटी 6.1 एस्ट्रा ॾिनल कमांड जी हद ओरागण लॻो। मॉडल जी टेस्टिंग दौरान एस्ट्रा इंसाननि खे गुमराह कयो ऐं ॾिनल कम जी हद पार कई। ओपन ए आई
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: सकरण के हो तो आवाज भी सकरण की है।
4: सुनते रहो GAFM 90.8।